0: की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ू जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ू ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
2: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाई बोनु आ लक्षण आपड़ने आपड़े मैं देखाए तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे।
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
0: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
2: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनिमिया थकी बची सकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम खेतीबाड़ी हमरवारा हंगर भाई बुनों ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहो आपनु सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणीमान स्वागत करा हूं अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जेम के भाई बहनों अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी जहां कार्यक्रम खेतीबाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाते। तो किसान भाई बहनों आज अमारी कार्यक्रम में आपते की बातचीत नु विषय है कि आपणे जलवायु अनुकूल खेती हरते करी शकां। जेम के आपणे देखी रहो के घणा कानो आ परिवर्तन जलवायु माते

आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सच्चा बचपन में जब भी हमारी आपसे मुलाकात होती है तो कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ता है। आज हम कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जानने वाले हैं। आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आपने कभी किसी बच्चे को ध्यान से देखा है? जब वो छोटा होता है तो उसे गिरने से डर नहीं लगता, वो बार बार कोशिश करता है, बार बार गिरता है और फिर उठता है और हर बार मुस्कुराकर फिर से चलने की कोशिश करता है। लेकिन श्रोता साथियों, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी हिम्मत ये मुस्कान कहीं खो जाती है और एक दिन वही बच्चा कहता है मैं नहीं कर सकता। तो सोचिए दोस्तों, ये मैं नहीं कर सकता कहाँ से आया? क्या ये बच्चा पैदा ही डर के साथ हुआ था? नहीं, ये डर धीरे धीरे उसके अंदर डाला गया हमारे शब्दों से, हमारी उम्मीदों से और कभी कभी हमारी डांटों से। जब बच्चा पहली बार गलती करता है तो वो डरता नहीं, लेकिन जब उसे उसी गलती के बदले डांट मिलती है, ताने मिलते हैं, तुलना मिलती है, तब उसके अंदर श्रोता साथियों एक डर जन्म लेता है, गलती करने का डर, कोशिश करने का डर और हार जाने का डर। तो साथियों, आज हम इसी डर की बात करेंगे और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी खोजेंगे। आज हमारे कार्यक्रम का विषय है गलती करना बुरा नहीं है, गलती से न सीखना बुरा है, क्योंकि जिंदगी में कोई भी इंसान बिना गलती किए कुछ नहीं सीख सकता। तो आज कार्यक्रम में सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपको आपके अपने घर की याद दिला दे और आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि कहीं हम ही तो अपने बच्चों को गलती करने से डरना नहीं सिखा रहे। तो कार्यक्रम में बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं कि गलती करना बुरा नहीं है, गलती से न सीखना बुरा है। और जैसा कि अंत में मेरा सवाल था जो हम खुद से करने वाले हैं कि कहीं हम ही तो नहीं जो अपने बच्चों को गलती करने से डरना सिखा रहे हैं। तो जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि किस तरीके से हम कुछ गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए।
1: अरे रीना, मैं सच में बहुत परेशान हो गई हूँ। समझ नहीं आता आजकल बच्चों को हो क्या गया है। मेरा बेटा जैसे कोई काम शुरू करता है थोड़ी सी गलती होते ही घबरा जाता है और किताब बंद कर देता है और कहता है कि मुझसे नहीं होगा मम्मी। कल ही के बाद देख लो कि होमवर्क करते समय एक सवाल गलत हो गया उससे और उसने पूरा का पूरा काम ही छोड़ दिया। रोने लगा और गुस्सा करने लगा, साथ ही वह खुद को ही दोष देने लगा और वह कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। मैं उसे समझाने की कोशिश करती रहती हूँ लेकिन शायद मैं भी गुस्से में उसे डांट ही देती हूँ और जिससे वह और भी ज्यादा डर जाता है। अब तो हालत ये हो गई है कि वह नया कुछ सीखने से भी डरने लगा है।
2: सीमा, जो तुम बता रही हो ना, ये सिर्फ तुम्हारे घर की कहानी नहीं है बल्कि आजकल बहुत सारे घरों की सच्चाई है। बच्चों का डर असल में गलती से नहीं होता बल्कि उस माहौल से होता है जो हम उन्हें देते हैं। जब बच्चा छोटी सी गलती करता है और उसे तुरंत डांट मिलती है या यह सुनने को मिलता है कि तुमसे नहीं होगा, तो उसके मन में एक डर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि गलती करना मतलब बुरा होना है और यही सोच धीरे धीरे उसे कमजोर बना देती है। सीमा, असल में बच्चा गलती करने से नहीं डरता बल्कि उस प्रतिक्रिया से डरता है जो उसे गलती के बाद मिलती है।
1: बिल्कुल, तो क्या हम ही बच्चों को डराना सिखा रहे हैं? लेकिन रीना, गलती तो गलत ही होती है ना। अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि ये गलत है तो वह कैसे सुधरेंगे?
2: गलती गलत नहीं होती सीमा, गलती तो सीखने का सबसे पहला कदम होती है। सोचो, जब बच्चा चलना सीख रहा था तब वह कितनी बार गिरा था। अगर उस समय हम उसे कहते कि तुमसे नहीं होगा, मत चलो, तो क्या वह कभी चल पाता? नहीं ना। असल में गलती हमें बताती है कि हमें क्या सुधारना है। अगर गलती न हो तो सीखने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बच्चों को सिखाना जरूरी है कि गलती करना बुरी बात नहीं है बल्कि गलती से न सीखना बुरा है।
1: अब मुझे समझ आ रहा है, शायद मैं ही उसे ज्यादा डांट देती हूँ। जब वह गलती करता है तो मैं उसे गुस्से में ये कह देती हूँ कि तुम ध्यान क्यों नहीं देते या तुम हमेशा गलत करते रहते हो। शायद मेरे ये ही शब्द उसे अंदर से तोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसे सही रास्ता दिखा रही हूँ लेकिन अब लग रहा है कि मैं उसे डराना सिखा रही हूँ।
2: बिल्कुल सीमा, गलती करना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि वही हमें बेहतर बनाती है। हमें बच्चों को यह सिखाना है कि जब भी गलती हो तो घबराना नहीं है बल्कि रुककर सोचना है मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। अगर बच्चा गिरता है तो उसे उठने में मदद करो लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसे यह विश्वास दिलाना कि वह खुद भी उठ सकता है। बच्चों को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, उन्हें मजबूत बनाओ ताकि वो हर गलती से सीख कर बेहतर बन सके।
1: हाँ रीना, आज आपने मेरी सोच बदल दी। अब मैं अपने बच्चे को डांटने के बजाय उसे समझाऊंगी और उसका साथ दूंगी। जब वो गलती करेगा ना तो मैं उसे ये नहीं कहूंगी कि तुम गलत हो बल्कि ये कहूंगी कि तुम सीख रहे हो। अब मैं उसे डर नहीं बल्कि हिम्मत दूंगी ताकि वह हर बार गिरकर और मजबूत बन सके।
2: यही तो असली जीत है सीमा। जब हम बच्चों को सिखा देते हैं कि गलती अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है तो वह कभी हार नहीं मानते। याद रखो, हर बड़ी सफलता के पीछे कई छोटी छोटी गलतियाँ छिपी होती हैं। जो उनसे सीख लेता है वही आगे बढ़ता है।
3: गलती करना बुरा नहीं है, गलती से न सीखना बुरा है। बच्चों को डर नहीं सीखने का मौका दीजिए।
0: तो श्रोता साथियों, आपने अभी जो कहानी सुनी वो सिर्फ एक घर की कहानी नहीं थी, वो हम सब की कहानी थी। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सबसे अच्छे बने, कभी गलती ना करें, हमेशा सही करें। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि हमेशा सही होना ही सबसे बड़ी गलती है क्योंकि जो कभी गलती नहीं करता वो कभी कुछ नया सीख ही नहीं पाता। तो यह थी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। बातें ढेर सारी हो गई हैं, अब समय हो गया है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए साथियों, आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, गिरो अगर तो उठना सीखो, गलती से कुछ करना सीखो, डर को दिल से दूर भगाओ, हर दिन कुछ नया अपनाओ। इन्हीं बातों के साथ आपको कहना चाहूंगी कि गलती कोई दुश्मन नहीं है, वो तो एक शिक्षक है जो हमें हर बार कुछ नया सिखाने आती है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा दें कि गलती करना शर्म की बात है, तो वो कोशिश करना ही छोड़ देंगे। और जिस दिन बच्चा कोशिश करना छोड़ देता है, उस दिन उसकी उड़ान रुक जाती है। इसलिए आज एक छोटा सा बदलाव करने की जरूरत है। जब आपका बच्चा गलती करे तो उसे डांटिए मत, उससे समझाइए, उसे ये मत कहिए कि तुम गलत हो, बल्कि ये कहिए कि तुम सीख रहे हो। जब वो गिरे तो उसे उठाइए जरूर, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसे ये विश्वास दिलाइए कि वो खुद भी उठ सकता है। याद रखिए श्रोता साथियों, बच्चों को पंख देने की जरूरत नहीं होती, उनके पंख पहले से ही होते हैं, हमें बस उन्हें उड़ने पर भरोसा देना होता है। और जिस दिन बच्चों को ये भरोसा मिल जाता है श्रोता साथियों कि मैं गलती कर सकता हूँ और उससे सीख भी सकता हूँ, उस दिन वो किसी भी मनुष्य से डरता नहीं है। तो आज से अपने शब्दों को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए और अपने बच्चों से कहिए, गलती करो लेकिन उससे सीखो, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। यकीन मानिए श्रोता साथियों, ये छोटे छोटे शब्द आपके बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि हर बच्चा बिना डर के सीखे, बिना रुक के आगे बढ़े। तो जैसा कि श्रोता साथियों, बातें ढेर सारी हो गई हैं और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको कार्यक्रम का पता बताना चाहूंगी, ताकि आपको हमारा आज का कार्यक्रम ये कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जागृति बुंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ थाय
2: नाना अंजलि बुंद हूँ था का
1: अरे जागृति बुंद आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बुंद एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बुंद, आपड़े भाई बुंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बुंद, आपड़े भाई बुंदो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
5: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व नी कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके,
6: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
7: होवे भाई बोनो, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मैं देखाए तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे।
8: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
9: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
10: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनीमिया थकी बची सकंगा।
0: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई न बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्य जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी थकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा, बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे, सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे, स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे, न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
2: हिंडो, स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे, जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनू खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
4: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, आज का जिया बुढ़ापा तनाव मुक्त होगा। यानी कि श्रोता साथियों, यदि हम आज अपने शरीर मन और रिश्तों का ध्यान रखेंगे तो आने वाला बुढ़ापा स्वस्थ खुशहाल और तनाव मुक्त हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि विषय है आज का जिया बुढ़ापा तनाव मुक्त होगा।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं आज का जिया बुढ़ापा तनाव मुक्त होगा।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं जागृति जी कि अक्सर लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे की चिंता तो बाद में करेंगे, लेकिन सच ये है श्रोता साथियों कि बुढ़ापा अचानक नहीं आता।
1: जी हाँ,
0: बल्कि हमारी आज की जीवन शैली ही उसे आकार देती है। यदि युवावस्था में हम अच्छी आदतें अपनाएंगे, तनाव को सही तरीके से संभालते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, तो उम्र बढ़ने के साथ जीवन अधिक संतुलित और सुखद बनता है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि स्वस्थ बुढ़ापे का पहला आधार है अच्छा स्वास्थ्य, नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और भरपूर नींद शरीर को लंबे समय तक सक्रिय बनाए रखती है। छोटी छोटी अच्छी आदतें भविष्य में बहुत बड़ी बीमारियों से हमें बचा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ साथ तनाव हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन उसे संभालने की कला सीखनी बहुत जरूरी है।
0: जी जी।
1: ध्यान, योग, संगीत, किताबें पढ़ना और प्रकृति के बीच समय बिताना मन को शांत रखते हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति उम्र बढ़ने पर भी सकारात्मक रहता है।
0: बिल्कुल जागृति जी। साथी श्रोता साथियों, अगर रिश्तों की बात करें तो परिवार, मित्र और समाज हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल,
0: यदि आज हम जागृति जी रिश्तों को सम्मान देंगे, संवाद बनाए रखेंगे और अपनापन बढ़ाएंगे तो बुढ़ापे में अकेलापन कम महसूस

0: होगा हमें। आज श्रोता साथियों, छोटी छोटी बचत जो है वो भविष्य में बड़ी सुरक्षा बन सकती है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में आप अनावश्यक खर्च से बचें, नियमित बचत करते रहें और आर्थिक अनुशासन अपनाते रहें, क्योंकि आर्थिक सुरक्षा तनाव को काफी हद तक कम कर देती है। जागृति जी,
1: बिल्कुल कशिश, सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। नई तकनीक, नई भाषा, नया हुनर या कोई शौक, ये सभी दिमाग को सक्रिय रखते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। साथ ही हमें नशे से दूरी रखनी होगी। आजकल हम देखते हैं कि हमारे युवा साथी कोई भी तनाव होता है तो नशा करने लग जाते हैं, तो हमें नशे से दूरी बनानी होगी। श्रोता साथियों, तंबाकू, शराब और अन्य नशे शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे दूर रहकर हम अपने भविष्य को और अधिक सुरक्षित और स्वस्थ बना सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी। साथी दोस्तों, सकारात्मक सोच को अपनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर परिस्थिति में शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने की आदत हमें विकसित करनी चाहिए। ऐसे में सकारात्मक सोच जीवन में आशा और ऊर्जा बनाए रखती है। साथ ही जागृति जी, हमारे युवा साथियों को सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। इसी के साथ दूसरों की मदद करना और सामुदायिक कार्यों में सहयोग देना, श्रोता साथियों, हमारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। ऐसे लोग बुढ़ापे में भी सक्रिय और खुश रहते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि जीवन एक लंबी यात्रा है। पहले हमारा बचपन आता है, फिर युवावस्था, युवावस्था से फिर प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था से फिर बुढ़ापा।
0: जी जी।
1: श्रोता साथियों, हर पड़ाव अपने साथ कुछ नया अनुभव, नई सीख और नई जिम्मेदारियां लेकर आता है। हम अक्सर भविष्य को लेकर इतने चिंतित रहते हैं, कभी पढ़ाई को लेकर, कभी करियर को लेकर, कभी परिवार को लेकर, कभी आर्थिक स्थिति की चिंता, तो कभी स्वास्थ्य, तो कभी आने वाले समय की चिंता।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन इस भाग दौड़ से हम एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं, भविष्य की खुशहाली की शुरुआत आज से ही होती है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए कहा जा सकता है कि आज में जिए बुढ़ापा तनाव मुक्त होगा।
0: जी,
1: इसका अर्थ केवल ये नहीं है दोस्तों कि हम भविष्य की चिंता बिल्कुल ना करें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम आज को समझदारी से जिए, अपनी अच्छी आदतों को मजबूत करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रिश्तों को समय दें, आर्थिक अनुशासन अपनाएं और मन को सकारात्मक रखें।
0: बिल्कुल।
1: जब आज मजबूत होगा तो आने वाला कल भी और अधिक सुरक्षित और संतुलित होगा।
0: जी बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि हम हमारे युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बात कर ही रहे हैं कि आज का जिया बुढ़ापे को तनाव मुक्त रखता है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और हम बात कर रहे थे आज में जी ये बुढ़ापा तनाव मुक्त होगा। हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारे समाज में कभी कभी बुढ़ापे को कमजोरी या निर्भरता से जोड़कर देखा जाता है कशिश, जबकि वास्तविकता ये है कि उम्र बढ़ना जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। बुजुर्गों के पास वर्षों का अनुभव है, ज्ञान और जीवन की समझ होती है। वे परिवार और समाज के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे को सुखद बनाने के लिए केवल धन या सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। इसके लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति, अच्छे रिश्ते, आत्मनिर्भरता और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी बहुत जरूरी है। इसीलिए बुढ़ापे की तैयारी उम्र बढ़ने के बाद नहीं बल्कि आज से ही शुरू होनी चाहिए।
1: जी हाँ जागृति जी, युवा साथियों आप याद रखिए कि बुढ़ापा कोई बोझ नहीं होता बल्कि जीवन के अनुभवों का सबसे सुंदर पड़ाव होता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन ये तभी सुखद बन सकता है जब उसकी तैयारी आज से शुरू की जाए। जागृति जी, अपने शरीर का सम्मान करें दोस्तों, मन को शांत रखें और परिवार से जुड़े रहें, साथ ही समाज के लिए उपयोगी बने। आपकी हर दिन की एक नई शुरुआत, आपका आज लिया गया एक अच्छा निर्णय दोस्तों आने वाले वर्षों को बेहतर बना सकता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए आज से ही आप ये बात जान लें कि हम ऐसा जीवन जिएंगे जिससे हमारा भविष्य स्वस्थ, सुरक्षित और तनाव मुक्त होगा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि उम्र तो सभी की बढ़ती है लेकिन खुशहाल बुढ़ापा उन्हीं का होता है जागृति जी, जो आज अपने जीवन को सही दिशा देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए साथियों अपने स्वास्थ्य, रिश्तों, समय और सपनों का सम्मान कीजिए और आज की अच्छी आदतें ही कल की आपकी मुस्कान बनेगी।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि स्वस्थ बुढ़ापे की सबसे मजबूत नींव स्वस्थ जीवन चली है। आज हम अपने शरीर के साथ साथ जैसा व्यवहार करेंगे उसका प्रभाव आगे के वर्षों में दिखाई देगा।
1: बिल्कुल।
0: अगर हम संतुलित भोजन करेंगे, पर्याप्त नींद लेंगे, नियमित शारीरिक गतिविधियाँ करेंगे, स्वच्छता और समय समय पर स्वास्थ्य की देखभाल, ये सारी आदतें अगर हम अपनाएंगे तो ये आदतें हमारे जीवन को बेहतर बनाती है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, बहुत अधिक तनाव, अनियमित दिनचर्या और स्वास्थ्य के अनदेखी भविष्य में परेशानियां बढ़ा सकती है। इसीलिए हमें अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी अच्छी आदतों को शामिल करना होगा।
1: बिल्कुल।
0: सुबह समय पर उठना होगा, शरीर को सक्रिय रखना होगा, पौष्टिक भोजन लेना होगा, पर्याप्त पानी पीना होगा और पर्याप्त आराम करना होगा।
1: जी हाँ।
0: ये साधारण बातें भविष्य के लिए बड़ी पूंजी बन सकती है।
1: बिल्कुल।
0: हम शरीर की देखभाल तो करते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मन की थकान को नजरअंदाज कर देते हैं, लगातार चिंता करते रहते हैं, तनाव करते रहते हैं, नकारात्मक सोच अपनाते रहते हैं, अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं, मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है ये सारी चीजें। आज से ही हमें अपने मन को भी समय देना होगा श्रोताओं। कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना, किताब पढ़ना, संगीत सुनना, प्रार्थना या ध्यान करना, अपनी पसंद के काम करना और परिवार के साथ बातचीत करना, ये सारी बातें मन को हल्का भी करती है कशिश। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर समस्या को अकेले सहने के बजाय विश्वास पात्र व्यक्ति से बात करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: बातचीत मन का बोझ कम करती है और रिश्तों में मजबूती लाती है।
1: जी हाँ।
0: अगर आज हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को महत्व देंगे तो भविष्य में भी हम बदलती परिस्थितियों का सामना अधिक संतुलित तरीके से कर पाएंगे।
1: बिल्कुल जागृति जी, ये बात आपने सही कही। इसी के साथ हम देखते हैं कि कई लोग सेवानिवृत्ति के बाद खुद को बेकार महसूस करने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जिससे श्रोता साथियों तनाव और अवसाद बढ़ सकता है। ऐसे में यदि व्यक्ति जीवन भर किसी उद्देश्य के साथ जीने की आदत बनाए रखता है, जैसे कि समाज सेवा, खेती में नवाचार, बच्चों को पढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण या किसी कला को आगे बढ़ाना साथियों, तो बुढ़ापे में भी उसका जीवन उत्साह और आत्मसम्मान से भरा रहता है।
0: जी हाँ।
1: कई लोग अपनी परेशानियां किसी से नहीं बताते जिससे मानसिक तनाव बढ़ जाता है जागृति जी।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में परिवार, मित्रों या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से खुलकर बात करने की आदत साथियों आपके मानसिक बोझ को कई हद तक कम करती है। संवाद हर उम्र में मन को हल्का और रिश्तों को मजबूत बनाता है जागृति जी।
0: बिल्कुल। और हम कह सकते हैं कशिश की धन और संपत्ति जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अच्छे रिश्तों का कोई विकल्प नहीं है।
1: जी।
0: परिवार, मित्र, पड़ोसी और समाज से जुड़े संबंध हमें अपनापन और सुरक्षा का एहसास देते हैं। आज हम देखते हैं कशिश की व्यस्त जिंदगी में लोग एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से बातचीत के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। मोबाइल और डिजिटल दुनिया ने संवाद को आसान बना दिया है लेकिन आमने सामने बैठकर बातचीत करने का महत्व आज भी बना हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि अगर हम आज अपने रिश्तों में सम्मान, विश्वास और संवाद बनाए रखेंगे तो उम्र बढ़ने पर अकेलेपन की भावना कम होगी।
1: बिल्कुल।
0: किसी बुजुर्ग के पास बैठकर उनकी बात सुनना, परिवार के साथ भोजन करना, मित्र से हालचाल पूछना या पड़ोसी की मदद करना, ये छोटी छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती है।
1: जी हाँ जागृति जी, साथियों जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि समय कभी रुकता नहीं है। बचपन से युवावस्था, युवावस्था से बुढ़ापे तक का यह सफर हर व्यक्ति तय करता है जागृति जी।
0: जी हाँ,
1: बस फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि कोई इस सफर को चिंता, बीमारी और अकेलेपन के साथ जीता है, तो कोई इसे आत्मविश्वास, सम्मान और खुशियों के साथ जीता है। याद रखिए युवा साथियों, तनाव मुक्त बुढ़ापा किसी किस्मत का परिणाम नहीं है,
0: जी हाँ,
1: बल्कि आज की अच्छी आदतों का प्रतिफल होता है। यदि हम आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने मन को सकारात्मक रखेंगे दोस्तों, और रिश्तों को मजबूत बनाएंगे, समय का सही उपयोग करेंगे और समाज से जुड़े रहेंगे, तो आने वाले वर्षों में हमारा जीवन अधिक सुरक्षित, संतुलित और सुखद होगा।
0: बिल्कुल,
1: हम सभी को मिलकर ये छोटा सा संकल्प लेना है कि हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए हम थोड़ा सा समय निकालेंगे, मन को तनाव से दूर रखेंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे, दूसरों की मदद करेंगे और ऐसी आदतें अपनाएंगे जागृति जी, जो हमारे आने वाले जीवन को खुशहाल बनाए।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि उम्र पड़ने के साथ सीखने की प्रक्रिया बंद नहीं होनी चाहिए। नई चीज सीखने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में उत्साह बना रहता है।
1: बिल्कुल,
0: आज से ही पढ़ने, सीखने और अपने हुनर को विकसित करने की आदत डालें। तकनीक सीखी, कोई भाषा सीखी, खेती या हस्तकला से जुड़ा नया ज्ञान प्राप्त करें, संगीत सीखे या कोई रचनात्मक काम करें। जब व्यक्ति सीखता रहता है कशिश, तो वो खुद को उपयोगी और सक्रिय महसूस करता है।
1: जी हाँ।
0: इसीलिए श्रोताओं, उम्र चाहे कोई भी हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि हम में से बहुत से लोग या तो बीते समय की गलतियों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं, इस कारण वर्तमान का वो लोग आनंद खो देते हैं। श्रोताओं, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और भविष्य अभी हमारे सामने है नहीं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे पास वास्तव में जो समय है वो है आज का दिन और ये पल। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भविष्य की योजना ना बनाएं, बल्कि योजना बनाकर फिर वर्तमान पर ध्यान दें। आज
1: हाँ।
0: का जो काम हमारे हाथ में है उसे अच्छे से करें। आज परिवार के साथ है तो परिवार के साथ ही रहें। आज पढ़ाई कर रहे हैं तो मन लगाकर करें। आज काम कर रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी से करें।
1: बिल्कुल,
0: वर्तमान को बेहतर बनाना ही भविष्य को बेहतर बनाने का सबसे सरल रास्ता है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और अंत में बस आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि तनाव जीवन का हिस्सा हो सकता है, पर उसे जीवन पर हावी नहीं होने देना है।
1: बिल्कुल,
0: हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता है कशिश, कुछ परिस्थितियों को समय देना पड़ता है। ऐसे समय में अपनी प्राथमिकताएं तय करें, जरूरी कामों पर ध्यान दीजिए और जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है उन्हें लेकर लगातार चिंता न करना मददगार हो सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इन्हीं बातों के साथ अब हम कार्यक्रम से विदा लेते हैं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
1: जी हाँ।
0: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगर रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हम बात करने वाले हैं छोटा व्यवसाय बड़ा आत्मविश्वास।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, बड़ा बनने के लिए हमेशा बड़ा शुरू करना जरूरी नहीं होता है। कई बार एक छोटी सी दुकान, घर से शुरू किया गया काम, छोटी सी सेवा या अपने हुनर से कमाया गया पहला रुपया भी बड़े सपने की नींव बनता है। अंजलि, छोटा व्यवसाय केवल कमाई का साधन नहीं बल्कि आत्मविश्वास, मेहनत और आत्मनिर्भरता की पहचान भी है।
0: बिल्कुल,
1: जब व्यक्ति अपने विचार और मेहनत पर भरोसा करके छोटी शुरुआत करता है तो धीरे धीरे वही शुरुआत उसके लिए बड़े अवसरों का रास्ता खोल देती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है छोटा व्यवसाय बड़ा आत्मविश्वास को लेकर।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि आपने गीत से पहले बताया था कि कोई भी चीज छोटी नहीं होती है, छोटे जो व्यवसाय होते हैं वो भविष्य की बड़ी सफलता की नींव बनाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज हमेशा पैसा या बड़े संसाधन नहीं होते, बल्कि अपने काम पर विश्वास, मेहनत करने की इच्छा और सीखते रहने का साहस होता है।
0: जी हाँ।
1: छोटा व्यवसाय बड़ा आत्मविश्वास केवल एक विचार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की एक मजबूत सोच है जागृति जी। जब कोई व्यक्ति अपने हुनर, अनुभव और मेहनत के बल पर अपना काम शुरू करता है तो वह केवल आय का साधन नहीं बनाता बल्कि अपने भीतर निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास भी पैदा करता है।
0: बिल्कुल।
1: छोटी शुरुआत व्यक्ति को यह विश्वास दिलाती है कि वह अपने प्रयासों से परिस्थितियों को बदल सकता है। आज के समय में छोटा व्यवसाय स्थानीय अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। छोटी किराना दुकान, सब्जी की दुकान, सिलाई कढ़ाई, हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ का निर्माण, मरम्मत की सेवा, कृषि आधारित काम, पशुपालन, स्थानीय उत्पादों की बिक्री या कोई अन्य छोटा व्यवसाय, ये सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति देते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, अक्सर लोग सफलता को बड़े कार्यालय, बड़ी दुकान, बड़े निवेश या बड़ी कंपनी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अनेक सफल व्यवसायों की शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर से हुई है।
1: जी जी।
0: शुरुआत छोटी होने का अर्थ ये नहीं है कि लक्ष्य छोटा हो। छोटा व्यवसाय व्यक्ति को अपने काम को समझने का अवसर देता है। वो ग्राहकों की जरूरतों को पहचानता है, बाजार को समझाता है, खर्च और आमदनी का हिसाब सीखता है और धीरे धीरे अपने काम में सुधार करता है।
1: बिल्कुल।
0: इस तरह हम कह सकते हैं कि छोटी शुरुआत एक तरह का अनुभव विद्यालय बन जाती है। जब व्यक्ति स्वयं अपने काम की जिम्मेदारी उठाता है तो उसमें निर्णय लेने का साहस बढ़ता है। उसे समझ आने लगता है श्रोताओं कि किसी समस्या से घबराने के बजाय उसका समाधान खोजा जा सकता है। यही सोच धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। किसी भी व्यवसाय की शुरुआत में पैसा महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन केवल पैसा ही सफलता की गारंटी नहीं देता। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास, धैर्य, अनुशासन और सीखने की इच्छा भी आवश्यक है।
0: बिल्कुल।
1: आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है दोस्तों कि व्यक्ति को कभी असफलता नहीं मिलेगी। इसका अर्थ है असफलता आने पर भी व्यक्ति दोबारा प्रयास करने का साहस रखे।
0: बिल्कुल।
1: जब कोई व्यक्ति अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है और गलतियों से सीखता है तो जागृति जी हम देखते हैं तो उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है।
0: बिल्कुल।
1: छोटे व्यवसाय में हर दिन एक नई सीख होती है। कभी ग्राहक कम आते हैं, कभी बिक्री घट जाती है, कभी खर्च बढ़ जाता है और कभी बाजार की परिस्थितियां बदल जाती हैं।
0: जी हाँ।
1: ऐसे समय में घबराने के बजाय समस्या को समझना और समाधान तलाशना ही वास्तविक आत्मविश्वास है।
0: बिल्कुल अंजलि, व्यवसाय शुरू करने के लिए हमेशा किसी बड़े शहर या बड़े बाजार की जरूरत नहीं होती है। हमारे आसपास ही बहुत सारी ऐसी जरूरतें होती है जिन्हें समझकर व्यवसाय का अवसर बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि गांव और कस्बों में स्थानीय जरूरतों से जुड़े बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। कृषि से जुड़े उत्पाद, खाद्य पदार्थ, मरम्मत सेवाएं, दैनिक उपयोग की गई वस्तुएं, स्थानीय हस्तशिल्प, परिवहन, पशुपालन से जुड़े उत्पाद और अन्य सेवाएं लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकती है। श्रोताओं, व्यवसाय की शुरुआत अक्सर एक सरल सवाल से होती है, लोगों को किस चीज की जरूरत है और मैं उसे बेहतर तरीके से कैसे उपलब्ध करा सकता हूँ। जो व्यक्ति इस सवाल का सही उत्तर खोज लेता है अंजलि, वो अपने आसपास ही अवसरों को पहचान जाता है।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें चल रही हैं इस विषय पर, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है, छोटा व्यवसाय बड़ा आत्मविश्वास को लेकर, यही जागृति जी अब बात आती है हुनर को व्यवसाय में बदलना। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई कौशल या अनुभव होता है।
1: जी हाँ।
0: किसी को खाना बनाने का हुनर आता है तो कोई मरम्मत का काम जानता है, तो कोई खेती से जुड़ा अनुभव रखता है, कोई हस्तशिल्प में कुशल होता है जागृति जी, तो कोई लोगों को अच्छी सेवा देने में सक्षम होता है। जब हुनर को सही दिशा और बाजार से जोड़ा जाता है तो वही कौशल व्यवसाय का रूप ले सकता है।
1: जी हाँ।
0: हुनर को व्यवसाय में बदलने के लिए सबसे पहले अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी है। यदि उत्पाद अच्छा है और सेवा भरोसेमंद है तो ग्राहक दोबारा आने लगते हैं।
1: जी हाँ।
0: धीरे धीरे यही भरोसा व्यवसाय की पहचान बन जाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, छोटे व्यवसाय में ग्राहक से संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बड़ी कंपनियों के पास विज्ञापन और प्रचार के बहुत सारे साधन हो सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन छोटे व्यवसाय के लिए ग्राहक का विश्वास सबसे मजबूत प्रचार हो सकता है। ईमानदारी से व्यवहार करना, सही कीमत लेना, अच्छी गुणवत्ता देना, समय पर सेवा देना और ग्राहक की बात सुनना व्यवसाय को मजबूत बनाता है। हम देखते हैं अंजलि कि एक संतुष्ट ग्राहक अपने परिचितों को भी उस व्यवसाय के बारे में बता सकता है।
0: जी जी।
1: इस प्रकार एक ग्राहक से कई नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। इसलिए व्यवसाय में केवल बिक्री पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, ग्राहक के विश्वास को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, छोटा व्यवसाय हो या बड़ा उद्योग, गुणवत्ता का महत्व हमेशा समान रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता बनाए रखता है तो धीरे धीरे बाजार में उसकी पहचान बनती है।
1: बिल्कुल।
0: कम गुणवत्ता वाले उत्पाद से थोड़े समय के लिए लाभ मिल सकता है, लेकिन श्रोता साथियों, लंबे समय में ग्राहक का भरोसा कम हो सकता है। इसके विपरीत अच्छी गुणवत्ता और ईमानदार व्यवहार व्यवसाय को लंबे समय तक टिकाऊ रखते हैं। इसलिए छोटे व्यवसाय की सबसे बड़ी ताकत यह होनी चाहिए कि ग्राहक यह महसूस करे कि उसे उसके पैसे के बदले सही उत्पाद और अच्छी सेवा मिल रही है। व्यवसाय में मेहनत जितनी जरूरी होती है उतना ही जरूरी है सही हिसाब किताब रखना।
1: जी हाँ।
0: कि कितनी आमदनी हुई है, कितना खर्च हुआ है, कितना पैसा बचा है और कितना पैसा व्यवसाय में वापस लगाया गया है, इन बातों की जानकारी होना आवश्यक है। कई बार जागृति जी, व्यवसाय में कमाई होती है लेकिन खर्च का सही हिसाब नहीं होने के कारण वास्तविक लाभ का पता ही नहीं चलता।
1: जी हाँ।
0: इसलिए शुरुआत से ही आय और खर्च का रिकॉर्ड रखना चाहिए। बचत की आदत व्यवसाय को कठिन समय में सहारा देती है और अचानक कोई खर्च बढ़ जाए या बिक्री कम हो जाए तो बचत व्यवसाय में संभालने में मदद करती है।
1: बिल्कुल अंजलि, हम कह सकते हैं कि कम पूंजी और सही योजना होना बहुत जरूरी है। यानी कि छोटा व्यवसाय शुरू करते समय सीमित पूंजी को ध्यान में रखते हुए योजना बनाना बहुत जरूरी है।
0: जी जी।
1: शुरुआत में आवश्यकता से ज्यादा सामान खरीदना, अनावश्यक खर्च करना या बिना सोचे बड़ा निवेश करना जोखिम बढ़ा सकता है। श्रोताओं, इसके बजाय पहले छोटे स्तर पर हमें शुरुआत करनी होगी, बाजार की प्रतिक्रिया देखनी होगी और ग्राहक की जरूरतों को समझकर धीरे धीरे विस्तार किया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: छोटी शुरुआत का

0: सबसे बड़ा लाभ यही है दोस्तों कि सीखने और सुधार करने का अवसर हमें लगातार मिलता है। आज हम देख रहे हैं कि तकनीक ने छोटे व्यवसायों के लिए नए अवसर खोल दिए हैं। मोबाइल फोन हो गए, डिजिटल भुगतान, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रचार के माध्यम से छोटे व्यवसाय अपने ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पहले किसी स्थानीय व्यवसाय की पहचान केवल आसपास के लोगों तक सीमित रहती थी, लेकिन अब डिजिटल माध्यमों से उत्पाद और सेवाओं की जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: हालांकि तकनीक का उपयोग सोच समझकर करना होगा श्रोताओं। डिजिटल माध्यम सुविधा का साधन है, लेकिन व्यवसाय की असली ताकत अभी भी गुणवत्ता, भरोसा और ग्राहक सेवा ही है।
1: बिल्कुल जागृति जी, व्यवसाय के रास्ते में उतार चढ़ाव आना भी स्वाभाविक है।
2: बिल्कुल।
1: हर दिन बिक्री अच्छी हो, हर निर्णय सही साबित हो, हर प्रयास सफल हो, ऐसा जरूरी नहीं है।
2: जी हाँ।
1: कभी कोई योजना काम नहीं करती, कभी ग्राहक की पसंद बदल जाती है और कभी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में असफलता को अंत मान लेना उचित नहीं है। असफलता यह बताती है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान कर उनसे सीखता है तो वह असफलता भविष्य की सफलता का आधार बन सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, व्यवसाय में सफलता एक दिन में नहीं मिलती। शुरुआत में ग्राहक कम आ सकते हैं, आमदनी सीमित हो सकती है और काम करने में कठिनाई भी आ सकती है।
2: जी हाँ।
1: लेकिन निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति ही धीरे धीरे अपनी जगह बना सकता है। और धीरे का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं होता है जागृति जी, धीरे का अर्थ है काम करते रहना, सीखते रहना और परिस्थितियों के अनुसार खुद को सुधारते रहना।
2: बिल्कुल।
1: एक छोटा व्यवसाय तभी बड़ा बनता है जब उसके पीछे लगातार प्रयास करने की आदत हो।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि ईमानदारी किसी भी व्यवसाय की मजबूत नींव है। ग्राहक के साथ सही व्यवहार, उत्पाद की सही जानकारी और उचित मूल्य व्यवसाय को विश्वसनीय बनाते हैं। श्रोताओं, इसके साथ अनुशासन भी बहुत जरूरी है, जैसे कि समय पर दुकान खोलना, सेवा उपलब्ध कराना, सामान व्यवस्थित रखना, ग्राहकों की बात को सुनना, अपने काम की जिम्मेदारी लेना व्यवसाय को मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल।
0: अनुशासन से काम में नियमितता आती है और नियमितता से भरोसा पैदा होता है। छोटे व्यवसाय केवल एक व्यक्ति की आय का माध्यम नहीं होते, वे स्थानीय बाजार को भी मजबूत बनाते हैं। जब लोग स्थानीय स्तर पर वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं अंजलि, तो पैसा स्थानीय अर्थव्यवस्था में घूमता रहता है।
1: बिल्कुल।
0: स्थानीय व्यवसाय मजबूत होने से बाजार में गतिविधियां बढ़ती रहती है। छोटे दुकानदार, कारीगर, सेवा प्रदाता, उत्पादक और ग्राहक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छोटे व्यवसाय समाज की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए व्यवसाय की शुरुआत करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि शुरुआत कितनी छोटी है। असली सवाल यह होना चाहिए कि हम अपने काम को कितनी ईमानदारी, मेहनत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ा सकते हैं। छोटी शुरुआत में बड़ी संभावनाएं छिपी होती हैं, जरूरत है उन्हें पहचानने की, सही योजना बनाने की और लगातार आगे बढ़ते रहने की।
2: बिल्कुल।
1: क्योंकि सफलता हमेशा बड़े साधनों से नहीं बल्कि छोटे कदमों को लगातार आगे बढ़ाने से बनती है। आज की छोटी दुकान कल बड़ी पहचान बन सकती है।
2: बिल्कुल।
1: आज की छोटी सेवा कल बड़ा व्यवसाय बन सकती है। आज की छोटी बचत कल बड़ी पूंजी बन सकती है। और आज का छोटा सा आत्मविश्वास जागृति जी कल बड़ी सफलता की वजह बन सकता है।
2: बिल्कुल।
1: इसलिए अपने काम को छोटा समझ कर कभी अपने सपनों को छोटा न करें। शुरुआत चाहे छोटी हो लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। मेहनत सच्ची हो, व्यवहार ईमानदार हो और सीखने की इच्छा बनी रहे तो रास्ते धीरे धीरे खुल जाते हैं।
0: बिल्कुल। तो बस अंत में यही कहना चाहेंगे कि छोटा व्यवसाय केवल कमाई की शुरुआत नहीं, ये आत्मविश्वास की शुरुआत है। और जब आत्मविश्वास मेहनत का हाथ थाम लेता है तो छोटी शुरुआत भी बड़ी मंजिल तक पहुंच सकती है।
1: बिल्कुल।
0: इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
0: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपनी साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है।
0: जी हाँ,
1: लेकिन अक्सर हम उसे समझने में देर कर देते हैं। आज का विषय है शरीर की भाषा और स्वास्थ्य को लेकर।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, हम सभी बोलकर अपनी बात कहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा शरीर भी बिना शब्दों के हमसे लगातार बातें करता है। कभी सिर दर्द, कभी थकान, कभी भूख कम लगना, कभी नींद ना आना, कभी बार बार प्यास लगना, कभी चक्कर आना, तो कभी शरीर में दर्द, ये सब शरीर के संदेश हैं। अगर हम इन संदेशों को समय रहते समझ लें तो कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मनीषा, लोग अपने काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि शरीर के छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए श्रोता साथियों, शरीर पहले धीरे से चेतावनी देता है और अगर तब भी ध्यान न दिया जाए तो बीमारी के रूप में हमें रुकने पर मजबूर कर देता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय से तो रूबरू कराई चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं शरीर की भाषा और स्वास्थ्य को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि मनुष्य केवल शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त नहीं करता, बल्कि उसका शरीर भी श्रोता साथियों लगातार कुछ न कुछ कहता रहता है। हमारे चेहरे के भाव, आंखों की गतिविधियां, बैठने और खड़े होने का तरीका, हाथ पैर की गतिविधियां, चलने की गति, आवाज का उतार चढ़ाव और शरीर की मुद्रा, श्रोता साथियों ये सभी हमारी भावनाओं, मन की स्थिति और कई बार हमारे स्वास्थ्य के बारे में हमें संकेत देते हैं। इसी को सामान्य रूप से हम शरीर की भाषा कहते हैं साथियों।
1: जी हाँ।
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि हम जब भी किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो केवल उसके शब्द ही नहीं सुनते, बल्कि उसके चेहरे और हाव भाव को भी देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति मुस्कुराकर बात करता है श्रोताओं, तो हमें उसमें आत्मविश्वास और प्रसन्नता का अनुभव होता है। इसके विपरीत यदि श्रोता साथियों कोई व्यक्ति लगातार उदास दिखाई देता है तो उसकी आंखों में थकान, शरीर झुका हुआ और वह सामान्य गतिविधियों में रुचि नहीं ले रहा है, तो श्रोता साथियों यह उसके मन या शरीर में चल रही किसी परेशानी का संकेत है।
1: बिल्कुल मनीषा, शरीर की भाषा का मतलब है शरीर द्वारा दिए जाने वाले वे संकेत जिनके माध्यम से वह हमें बताता है कि अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं।
0: जी
1: जैसे कि लगातार थकान महसूस होना, बिना कारण वजन कम या ज्यादा होना, भूख कम लगना, नींद पूरी होने के बाद भी सुस्ती रहना, बार बार सिर दर्द होना, सांस फूलना, शरीर में सूजन आना, त्वचा का रंग बदलना, आंखों का पीला होना, बालों का अधिक झड़ना, नाखूनों का कमजोर होना, ये सभी संकेत बताते हैं कि शरीर को हमारी मदद की जरूरत है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, कई लोग सोचते हैं कि मेहनत की वजह से थकान होना सामान्य है, लेकिन यदि बिना ज्यादा काम किए भी लगातार कमजोरी महसूस हो रही है तो ये शरीर में खून की कमी, पोषण की कमी, थायराइड, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए केवल आराम करने से काम नहीं चलेगा, कारण जानना भी जरूरी है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर बात करें शरीर और मन के संबंध की, तो साथियों हम देखते हैं कि हमारा शरीर और मन अलग अलग नहीं है। मानसिक स्थिति का प्रभाव शरीर पर और शारीरिक स्थिति का प्रभाव मन पर पड़ता है। जब हम तनाव में होते हैं श्रोताओं, तो हमारे शरीर में कई बदलाव हो सकते हैं। दिल की धड़कन तेज हो सकती है, सांस लेने का तरीका बदल सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है और व्यक्ति को बेचैनी महसूस हो सकती है। साथ ही श्रोता साथियों, इस तरह पर्याप्त नींद न मिलने से व्यक्ति की आंखों में थकान, चेहरे पर सुस्ती और शरीर की गतिविधियां हैं अंजलि जी, उनमें भी कमी दिखाई देती है।
1: जी हाँ।
0: लंबे समय तक चिंता या तनाव में रहने से श्रोता साथियों व्यक्ति का व्यवहार है वो बदल जाता है।
1: बिल्कुल मनीषा, कई लोग सोचते हैं कि मेहनत की वजह से थकान होना सामान्य है, लेकिन यदि बिना ज्यादा काम किए भी लगातार कमजोरी महसूस हो रही है तो ये शरीर में खून की कमी, पोषण की कमी, थायराइड, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए श्रोता साथियों, केवल आराम करने से काम नहीं चलेगा, कारण जानना भी जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब शरीर स्वस्थ होता है तब भूख भी सही लगती है।
0: जी हाँ।
1: और भोजन भी आसानी से पचता है। अगर लगातार भूख कम लगे, खाना खाने के बाद भारीपन रहे, गैस या कब्ज बनी रहे, बार बार पेट दर्द हो, तो इससे सामान्य बात समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और समय पर खाना शरीर को स्वस्थ रखता है।
0: बिल्कुल।
1: नींद केवल श्रोता साथियों आराम नहीं, बल्कि शरीर की मरम्मत का समय होता है। अगर देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत हो, तनाव ज्यादा हो या नींद पूरी न हो, तो शरीर धीरे धीरे कई समस्याओं की ओर बढ़ने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: नींद की कमी से याददाश्त कमजोर होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है, हृदय रोग का खतरा भी बढ़ सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं। तो ये बातें कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों से ऐसे ही जारी रखेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बहुत अच्छे विषय पर बात कर रहे हैं, हम जान रहे हैं शरीर की भाषा और उसका स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर। श्रोता साथियों, शरीर का कोई भी लगातार रहने वाला दर्द सामान्य नहीं होता है।
1: जी हाँ।
0: यदि कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सीने में दर्द, सिर दर्द लंबे समय तक बना रहे तो केवल दर्द की दवा लेने के बजाय डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ त्वचा और आंखें जो होती हैं वो भी बोलती हैं। त्वचा हमारे स्वास्थ्य का आईना है। यदि त्वचा बहुत रूखी हो, बार बार खुजली हो, पीलेपन की समस्या हो, आंखें पीली दिखे तो ये शरीर के अंदर किसी समस्या का संकेत हो सकता है। कई बार मनीषा शरीर नहीं बल्कि मन पहले संकेत देता है।
1: जी हाँ।
0: यदि किसी काम में मन न लगे, हमेशा उदासी रहे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आए, घबराहट बनी रहे, किसी से मिलने का मन न करे तो यह मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय होता है।
1: बिल्कुल।
0: मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि श्रोता साथियों, हम जो भोजन करते हैं उसका सीधा संबंध है वो हमारे स्वास्थ्य से है। शरीर को ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल।
1: यदि भोजन श्रोता साथियों संतुलित न हो तो कमजोरी, थकान या अन्य परेशानियां है वो हमें महसूस हो सकती हैं। इसलिए श्रोता साथियों, भोजन में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें, अनाज, दूध या उनके उचित विकल्प हैं श्रोता साथियों, जैसे कि मेवे और पर्याप्त पानी हम शामिल कर सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: बहुत अधिक तला भुना, अत्यधिक मीठा या अत्यधिक नमकीन वाला श्रोता साथियों भोजन ही उसका हमें नियमित सेवन नहीं करना है। आप चाहे तो श्रोता साथियों उसका कभी कभी सेवन कर सकते हैं, लेकिन लगातार उसके सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।
0: बिल्कुल मनीषा, गाँव में लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कई बार नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं कराते। छोटी सी परेशानी को भी अपने आप ठीक हो जाएगी ऐसा सोचकर टाल देते हैं और यही लापरवाही बाद में बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। गाँव के स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य शिविरों का लाभ जरूर हमें उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, हमारा शरीर एक अनमोल साथी है। यह दिन रात बिना रुके हमारे लिए काम करता है और जब भी किसी समस्या का आभास होता है तो छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से हमें सावधान करता है। समझदारी इसी में ही है कि हम इन संकेतों को अनदेखा करने के बजाय उन्हें समझे और समय पर सही कदम उठाए।
1: बिल्कुल।
0: स्वस्थ जीवन केवल दवाइयों से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम, सकारात्मक सोच और समय पर स्वास्थ्य जांच से बनता है।
1: जी हाँ।
0: आज हम एक संकल्प लें कि हम अपने शरीर की हर छोटी बड़ी बात को महत्व देंगे, अपने परिवार के सदस्यों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे और जरूरत पड़ने पर बिना झिझक स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सा से सलाह लेंगे। क्योंकि
1: जी
0: जब
1: हाँ।
0: हम अपने शरीर की भाषा को समझना सीख जाते हैं तब हम केवल बीमारी से नहीं बचते बल्कि एक ऊर्जावान, खुशहाल और सम्मानपूर्ण जीवन की ओर भी कदम बढ़ाते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के

0: बात कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि हमारा शरीर है वो हर समय हमसे संवाद करता रहता है।
1: बिल्कुल।
0: कभी चेहरे के भावों के माध्यम से श्रोता साथियों, कभी थकान के रूप में तो कभी नींद में बदलाव के रूप में, और कभी श्रोता साथियों हम देखते हैं कि सर दर्द या कमजोरी के रूप में। जरूरत केवल श्रोता साथियों इतनी सी है कि हम उन संकेतों को समझे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आदत विकसित करें।
1: जी।
0: शरीर की भाषा को समझना किसी बीमारी का स्वयं निदान करना नहीं है साथियों, बल्कि अपने शरीर के प्रति जागरूक होना है। यदि हम संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित गतिविधियां, स्वच्छता और मानसिक शांति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे अंजलि जी, और शरीर में होने वाले बदलावों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, तो श्रोता साथियों हम हमारे स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। याद रखिए साथियों कि हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसकी आवाज को सुनिए, उसके संकेतों को समझिए और स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम हमेशा आगे बढ़ाइए।
1: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें की और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
1: विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले एक और प्यारे से गीत के साथ में श्रोता साथियों को मनोरंजन करवाना चाहेंगे।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि मनीषा के आज कार्यक्रम में हमारी जो श्रोता साथियों से बातचीत रही है वो उन्हें अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमरवावर अमर हिता भाई बुन ने आपनी बुन मनीषा
1: ने आपनी बुन अंजलि नु
0: राम राम होवे भाई बुनो आप सब हमले रिया हो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर हूं हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में
1: होवे भाई बुनो लेने हाजिर थे के हूं कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक नया विषय ने हाते मनीषा बुन आज कार्यक्रम में अपने भाई बुनो की बातचीत नु विषय है कि गांव नी अपनी जे जूनी हीक है एनों हूँ महत्व है ने अवड़ी नी जे नवी पीढ़ी है ई इंत की हरते दूर थाती जई रही है ने हरते आ समस्या वदी रही है ने आनु हूँ कारण है ने समाधान ना हो पाए थे शके आपने देखो हो कि आपने गांव केवल रहवानी जगह नहीं बल्कि जीवन जीवानी पाठशाला भी है जहाँ सूरज से ही ई किताबे तक ही व्यवहार ही के है मोटो मन कनु सम्मान करवो ही के है मेहनत नु महत्व ही के है ने प्रकृति ने हाथ संतुलन बनावी ने जीवानी कला भी ही के हैं पर जिम जिम टाइम बदलाई रही है एम एम जीवन शैली बदलाई रही है ने नवी पीढ़ी जो है ये नवी तकनीक नवा अवसर ने नवी सोच ने हाथे अगाड़ी बदी रही है आ बदलाव भी मनीषा पुन अपने एम नहीं कहता कि जरूरी नहीं बदलाव भी जरूरी है पर आना बदलाव ने वैस में अपने के ने के अपने गाँव नी जे असल परंपराएं हती एना ना जे जीवन मूल्य हता एना तक ही दूर था सही रहो आधुनिकता ने अपनावते रखे हरते आपड़े आपड़ी जड़ तक जोड़ी ने रही सको अणा विषय माते हंगरी बातें आज कार्यक्रम में थवा वाली है
0: होवे अंजलि बुन अणा विषय माते आपड़े भाई बुन कथी घणा कानी बातें रेंगा अब ब्रह्मणा गीत ने मोरे कर आपड़ी बाते
1: होवे तो भाई बुनो आप हमवरते रहसु आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, बेटी है तो कल है, बेटा भी परिवार की शान है। दोनों को मिले बराबर अवसर तभी बनेगा देश महान। न भेदभाव की कोई दीवार हो, न सपनों पर पहरा हो, बेटा बेटी एक समान हर घर में यही चेहरा हो।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर हम हाजिर हो गए हैं एक नए विषय के साथ में। आज हमारा विषय है कार्यक्रम में बेटा बेटी एक समान, समान अवसर और समान सम्मान को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम अक्सर कशिश कहते हैं कि बेटा और बेटी दोनों हमारे परिवार का हिस्सा है, दोनों हमारी खुशियां हैं और दोनों हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन श्रोता साथियों, क्या हमारे व्यवहार में ये समानता दिखाई देती है? क्या बेटी को पढ़ाई के लिए बाहर भेजते समय हम उतना ही सहज महसूस करते हैं जितना बेटी के मामले में? क्या बेटे के सपनों को उतना ही महत्व देते हैं जितना बेटी के सपनों को? क्या घर के फैसलों में बेटी की राय उतनी ही सुनी जाती है? और क्या हम बेटों को भी घर के काम उतना ही कराना उतना ही जरूरी समझते हैं जितना बेटियों को? इन्हीं सवालों पर कशिश आज हम खुलकर कार्यक्रम में बात करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: जानेंगे कि किस तरीके से बेटा और बेटी को हमें एक समान रखने की जरूरत है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना साथियों को हम पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दें।
1: जी बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय से रूबरू आपको करा ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बेटा बेटी एक समान को लेकर। अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारे समाज में बेटा और बेटी दोनों परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। दोनों के अपने सपने हैं, भावनाएं हैं, क्षमताएं हैं और जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा भी होती है। लेकिन फिर भी साथियों, लंबे समय से हमारे समाज के कुछ हिस्सों में बेटा और बेटियों के बीच भेदभाव हमें देखने को मिलता रहा है। कई परिवारों में तो बेटे को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि बेटी को कई अवसरों से दूर रखा जाता है। हम जैसा कि देख रहे हैं साथियों कि समय के साथ साथ समाज में बदलाव आया है, लेकिन आज भी कई जगहों पर बेटा बेटी के बीच समानता पूरी तरह नहीं दिखाई देती। बेटा बेटी एक समान ही ये जो चीज़ है वो केवल एक नारा नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच है साथियों जिसकी जरूरत हर परिवार को और हर समाज को है। इसका अर्थ है बेटे और बेटी को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खेल, रोजगार, निर्णय लेने और अपने सपनों का पूरा करने के लिए समान अवसर दिए जाए।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि कई बार भेदभाव जानबूझकर नहीं होता, वह हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में छिपा होता है। बेटे से कहा जाता है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो।
0: बिल्कुल,
1: बेटी से कई बार पूछा ही नहीं जाता कि वह क्या बनना चाहती है। बेटी को साइकिल, मोबाइल या पढ़ाई के लिए अतिरिक्त सुविधा मिल जाती है, जबकि बेटी से कहा जाता है कि तुम्हें तो घर संभालना है। यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बच्चों के मन में यह भावना पैदा कर सकती है कि बेटा ज्यादा महत्वपूर्ण है और बेटी कम।
0: बिल्कुल,
1: ये सोच बदलनी होगी। बच्चे का भविष्य उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, रुचि, प्रतिभा और अवसरों से तय होता है। जैसा कि अगर हम बात करें कि बेटा बेटी को समान अवसर देना क्यों जरूरी है, तो श्रोता साथियों, क्योंकि हर बच्चे के अंदर अपनी अलग प्रतिभा है।
0: बिल्कुल,
1: को विज्ञान में रुचि हो सकती है तो कोई खेल में आगे बढ़ सकती है, कोई खेती में नई तकनीक अपना सकती है, तो कोई शिक्षक, डॉक्टर, अधिकारी, कलाकार या उद्यमी बन सकती है। तरह बेटा भी पढ़ाई के साथ घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाना सीख सकता है।
0: बिल्कुल,
1: अवसर तय करते समय यह नहीं देखना चाहिए कि बच्चा बेटा है या बेटी, ये देखना चाहिए कि उसकी रुचि क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका सपना क्या है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि हम देखते हैं कि आज बेटियां शिक्षा, विज्ञान, खेल और अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं। उन्होंने ये दिखाया है साथियों कि अवसर मिलने पर वे भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि हम बेटियों को कमजोर समझने वाली पुरानी सोच को पीछे छोड़े और उन्हें आगे बढ़ने का पूरा अवसर दें। क्योंकि हम देखते हैं अंजलि जी कि बेटा बेटी एक समान केवल एक नारा नहीं है, बल्कि एक प्रगतिशील और सभ्य समाज की पहचान है। प्रकृति ने लड़के और लड़कियों को अलग अलग भूमिकाएं दी हैं, लेकिन दोनों को मनुष्य के रूप में समान अधिकार, सम्मान और अवसर भी प्राप्त किए हैं। दोस्तों, किसी बच्चे का भविष्य उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा, मेहनत, अवसरों से निर्धारित होना चाहिए। इसलिए समाज में बेटियों को बेटों के समान शिक्षा भी दी जानी चाहिए, स्वतंत्रता भी दी जानी चाहिए और अवसर मिलना और सम्मान मिलना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि समान अवसर का मतलब क्या केवल समान शिक्षा देना होता है? समान अवसर का मतलब है बेटा और बेटी दोनों को शिक्षा का अवसर मिले, दोनों को अपनी पसंद का विषय चुनने की स्वतंत्रता मिले, खेल और अन्य गतिविधियों में भाग लेने दिया जाए,
0: बिल्कुल
1: उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया जाए, दोनों को अपनी बात रखने का अवसर मिले, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने दी जाए और सबसे महत्वपूर्ण, दोनों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाए।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, किसी बेटी की शिक्षा केवल उसके व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं रहती है। जब एक बेटी पढ़ती है तो वो अपने अधिकारों को समझती है, अपने फैसले लेने का आत्मविश्वास विकसित करती है और आगे चलकर अपने परिवार, समाज के विकास में योगदान दे सकती है।
0: बिल्कुल,
1: क्षेत्रों में बेटियों की शिक्षा को लेकर कई चुनौतियां हो सकती हैं। दूरी, आर्थिक कठिनाई, घरेलू जिम्मेदारी, सुरक्षा की चिंता, पुरानी सोच, लेकिन चुनौतियों का सामना बेटी की पढ़ाई रोकना नहीं है। हमें मिलकर ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें बेटी सुरक्षित भी महसूस करे और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी हो।
0: जी हाँ अंजलि जी, हम देखते हैं कि हमारे समाज में लंबे समय से बेटों को बेटियों की अपेक्षा अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति रही है। कई परिवारों में बेटी के जन्म पर खुशी मनाई जाती है, जबकि बेटी के जन्म को बहुत समझा जाता है। बेटों को शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि बेटियों को घर के काम तक सीमित ही कर दिया जाता है। उन्हें अपनी पसंद का विषय पढ़ने, करियर बनाने या अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने का समान अवसर भी नहीं मिलते। दोस्तों, ये भेदभाव केवल बेटियों के साथ अन्याय नहीं बल्कि पूरे समाज की प्रगति में बाधा भी है। यही यदि आधी आबादी को आगे बढ़ाने से रोक दिया जाए तो देश का पूर्ण विकास संभव नहीं हो सकता। अंजलि जी,
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि समानता की बात केवल बेटियों को अवसर देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बेटों को भी समानता सिखाना उतना ही जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि भविष्य में बेटियों का सम्मान के साथ आगे बढ़े, आज कि बेटों को यह समझाना होगा कि घर का काम केवल लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं बेटों की भी है।
0: बिल्कुल,
1: बनाने में मदद करना, घर साफ करने में सहयोग करना, बहन की देखभाल करना, पानी भरने का सामान व्यवस्थित करने में मदद कर सकते हैं, परिवार के बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: बेटे का सम्मान कम नहीं होता बल्कि उसकी समझ और जिम्मेदारी बढ़ती है।
0: बिल्कुल,
1: अर्थ यह नहीं कि बेटा और बेटी बिल्कुल एक जैसे होंगे।
0: दोनों की रुचि अलग हो सकती है, उनकी क्षमता अलग हो सकती है, उनके सपने अलग हो सकते हैं। जी हाँ,
2: समानता का अर्थ है अलग होने के बावजूद किसी को कमतर न समझना। बेटी की बात भी सुनी जाए, बेटे की भावनाओं को भी समझा जाए, बेटी की सफलता पर गर्व किया जाए तो बेटे के प्रयासों की सराहना की जाए। बच्चों को ये महसूस होना चाहिए कशिश कि मेरा परिवार जो है वो मेरी कीमत मेरे बेटा और बेटी दोनों से ही है,
0: बिल्कुल
2: उनके व्यक्तित्व और मेरे प्रयासों से भी होनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बातचीत कर ही रहे हैं और जान रहे हैं कि किस प्रकार से बेटा बेटी एक समान ही, ये जो नारा है वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को हम यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें।
2: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि बेटा बेटी एक समान की जो हम बात कर रहे हैं उसमें परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल
0: कशिश, बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं अपने परिवार से। अगर घर में माता पिता बेटा बेटी के साथ बराबरी का व्यवहार करें तो बच्चे भी समानता को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं।
1: जी जी।
0: माता पिता बच्चों से कह सकते हैं कि तुम दोनों हमारे लिए बराबर हो, लेकिन केवल कहना पर्याप्त नहीं है, व्यवहार में दिखाई भी देना चाहिए। अगर बेटी को पढ़ने के लिए समय मिलता है तो बेटी को भी मिले। अगर बेटी से घर का काम कराया जाता है तो बेटी को भी जिम्मेदारी दी जाए। अगर बेटी की राय परिवार में पूछी जाती है तो बेटी की राय भी पूछी जानी चाहिए। यही वास्तविक सम्मान है। हम देखते हैं कि बेटी के सपनों को भी हमें पंख देने की जरूरत है। कभी बेटी कहती है कि मुझे आगे पढ़ना है तो उसका जवाब यह नहीं होना चाहिए कि लड़कियां तो इतना पढ़कर क्या ही करोगी।
1: बिल्कुल
0: कि पूछा जाना चाहिए कि तुम क्या पढ़ना चाहती हो, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं। तभी बेटी कहे कि मुझे खेलना है तो उसे तुरंत रोकने के बजाय उसकी रुचि समझिए। कभी कहे कि मुझे अपना काम शुरू करना है तो उसके सपने का मजाक मत उड़ाइए। हो सकता है कि आज जिस सपने को हम छोटा समझ रहे हैं वही कल परिवार और गांव का नाम रोशन कर सकती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, समानता का मतलब बेटों के लिए भी एक बेहतर वातावरण बनाना है। कई बार बेटों से कहा जाता है तुम लड़के हो तुम्हें मजबूत बनना है, रोना नहीं है। लेकिन श्रोता साथियों, भावनाएं बेटा बेटी देखकर नहीं आती। बेटे को भी कभी दुख हो सकता है, उसे भी डर लग सकता है, उसे भी असफलता का सामना करना पड़ सकता है।
1: बिल्कुल
0: इसलिए बेटों को भावनाएं व्यक्त करने, मदद मांगने और दूसरों का सम्मान करना भी हमें सिखाना है।
1: जी
0: समानता का
1: जी।
0: समाज में वही समानता का समाज वही होगा कशिश जहाँ बेटियां अपने सपने खुलकर जी सके, बेटी भी संवेदनशील और जिम्मेदार इंसान बन सके।
1: बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं कि जब परिवार या समाज में किसी बच्ची के साथ उसके लिंग के आधार पर अलग व्यवहार होता है तो उसे हम लैंगिक भेदभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए साथियों, बेटे को अच्छे स्कूल में भेजना लेकिन बेटी की पढ़ाई जल्दी छुड़वा देना, बेटे को अपनी पसंद का करियर चुनने देना लेकिन बेटी के फैसले को महत्व न देना, बेटे को घर के काम से दूर रखना और बेटी पर सारे घरेलू काम जिम्मेदारी डाल देना।
0: जी जी।
1: साथियों, ये सभी जो भेदभाव है वो लैंगिक असमानता या फिर कह सकते हैं कि लैंगिक भेदभाव के उदाहरण है। कई बार भेदभाव बहुत छोटे रूप में दिखाई देता है, जिससे घर में बेटे को भोजन ज्यादा पौष्टिक देना लेकिन बेटी से कहना कि पहले भाई को खाने दो फिर तुम खाना।
0: बिल्कुल।
1: बेटी की उपलब्धियों पर खुशी मनाना लेकिन बेटी की सफलता को सामान्य समझना। ऐसी छोटी छोटी बातें अंजलि जी बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है।
0: जी हाँ कशिश, हम देखते हैं कि बेटा बेटी समानता जो है वो केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं है। गांव, स्कूल, पंचायत, युवा समूह, महिला समूह और पूरा समुदाय इसमें भूमिका निभा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: समुदाय के स्तर पर हमें करना ये होगा कि बेटी की शिक्षा को हमें प्रोत्साहित करना है, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की जानकारी लेकर परिवार से संवाद करना है, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ जागरूकता फैलानी है, बेटियों को खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामुदायिक गतिविधियों में आगे आने का अवसर देना है।
1: बिल्कुल।
0: ग्राम सभा और सार्वजनिक बैठकों में महिलाओं को लड़कियों की आवाज को महत्व देना है। बेटों को भी घरेलू जिम्मेदारियों में शामिल करें, किसी बच्चे का मजाक उसके लिंग के आधार पर न उड़ाए।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, हम सभी को इन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आज हमें केवल यह कहने की जरूरत नहीं है कि बेटा बेटी एक समान है, हमें अपने व्यवहार से ये साबित करना होगा। क्योंकि जब बेटी को स्कूल भेजने का फैसला बिना भेदभाव के होगा, जब बेटे और बेटी को दोनों को जो सपने हैं उन्हें सुना जाएगा, जब घर के कामों में दोनों बराबरी से भागीदारी लेंगे, जब परिवार के फैसलों में बेटी की आवाज भी महत्वपूर्ण होगी और जब किसी बेटे को भी अपने सपनों के लिए यह नहीं सुनना पड़ेगा कि तुम लड़की हो तुम नहीं कर सकती, तभी हम कह पाएंगे कि हमारे समाज में वास्तविक समानता की शुरुआत हो चुकी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं कि बेटियों के सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। शिक्षित बेटी अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझती है, आत्मनिर्भर बनती है और अपने परिवार तथा समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, हर माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे बेटा और बेटी दोनों को समान शिक्षा का अवसर दें। आज बेटियां विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रशासन, खेल, राजनीति, कला और व्यापार जैसे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा सिद्ध कर रही हैं।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, कल्पना चावला, पीवी सिंधु और मैरी कॉम जैसी महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि अवसर मिलने पर बेटियां किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं।
0: जी जी बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम जान पा रहे हैं कि किस तरीके से बेटा बेटी में समानता की जो चीजें हैं वो हमें फैलानी है और इसका क्या महत्व है। आगे भी निरंतर महत्वपूर्ण बातें बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ दिलीप जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, बातें बहुत अच्छी चल रही है, बेटियों के समान अवसर और कह सकते हैं कि बेटा बेटी एक समान को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: यही अगर बात करें अंजलि जी, तो बेटा और बेटी दोनों में अपनी अपनी प्रतिभाएं और क्षमताएं होती हैं। यदि किसी लड़की को केवल इसलिए अवसरों से वंचित कर दिया जाए क्योंकि वह लड़की है, तो उसे या उसके साथ अन्याय है। परिवार और समाज को बच्चों की योग्यता के आधार पर उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, न कि उनके लिंग के आधार पर। समान अवसर का मतलब केवल शिक्षा देना नहीं होता दोस्तों, बल्कि इसका मतलब है लड़के और लड़कियों को खेल, रोजगार, निर्णय लेने और अपने सपनों को पूरा करने के समान अवसर मिले। हम देखते हैं कि बेटियों को भी अपनी पसंद का करियर चुनने का और आत्मनिर्भर बनने का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए।
1: जी हाँ कशिश, बेटा बेटी की समानता केवल एक नारा नहीं बल्कि एक ऐसी सोच है जो परिवार के वर्तमान और समाज के भविष्य दोनों को बदल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: जिस घर में बच्चों के बीच भेदभाव कम होता है, वहाँ बच्चों के भीतर आत्मविश्वास, सहयोग और जिम्मेदारी की भावना मजबूत होती है। हमें ये भी समझना होगा श्रोता साथियों कि बेटी को अवसर देना, किसी पर उपकार करना नहीं, यह उसके अधिकार और उसकी क्षमता को स्वीकार करना है।
0: बिल्कुल,
1: उसी तरह बेटी को संवेदनशील बनाना, उसकी स्वतंत्रता कम करना नहीं बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाना है। आज जरूरत है कि हम अपने घरों की छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दें। क्या हम बेटियों को निर्णय लेने देते हैं? क्या हम बेटों को घरेलू काम सिखाते हैं? क्या हम दोनों बच्चों की पढ़ाई को समान महत्व देते हैं? क्या हम दोनों की असफलताओं में उन्हें संभालते हैं और सफलताओं में उनका उत्साह बढ़ाते हैं? श्रोता साथियों, बदलाव किसी बड़े मंच से शुरू होना जरूरी नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: बदलाव हमारे घर की बातचीत से शुरू हो सकता है। जब माता पिता बेटी से उसके सपने पूछेंगे, बेटे से उसकी भावनाएं पूछेंगे और दोनों को मेहनत करने के समान अवसर देंगे, तब एक नई पीढ़ी तैयार होगी। ऐसी पीढ़ी जो भेदभाव से ऊपर उठकर कशिश इंसान को इंसान की तरह देखेगी।
0: बिल्कुल,
1: हमारी बेटियां केवल किसी की बेटी, बहन या पत्नी बनने के लिए नहीं जन्म लेती, वे अपनी पहचान बनाने, सीखने, आगे बढ़ने और समाज में योगदान की पूरी क्षमता रखती हैं।
0: बिल्कुल,
1: और हमारे बेटे भी केवल परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं, उन्हें भी सहयोग, सम्मान, संवेदना और समानता की सीख चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: आज से एक छोटा सा संकल्प लें कि बेटे के सपने को भी उड़ान देंगे, बेटी के सपने को भी, बेटी की बात भी सुनेंगे और बेटी की बात भी, बेटे को जिम्मेदारी भी देंगे और बेटी को अधिकार भी, और दोनों को देंगे समान अवसर, समान सम्मान और आगे बढ़ने का समान विश्वास।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जब घर में भेदभाव की जगह बराबरी लेती है तो केवल एक बच्चा नहीं बदलता बल्कि पूरी पीढ़ी बदलती है। इसलिए न बेटा कम न बेटी कम, दोनों है परिवार का दम। सपनों को दो खुला आसमान, बेटा बेटी एक समान।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं साथियों कि समान अवसर के साथ साथ सम्मान सम्मान भी होना जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: बेटी को परिवार में बेटी के समान प्यार और सम्मान मिलना चाहिए, उसके विचारों को सुना जाना चाहिए, उसके निर्णयों का सम्मान किया जाना चाहिए। घर के कामों की जिम्मेदारी केवल बेटियों की नहीं बल्कि परिवार की सभी सदस्यों की होनी चाहिए।
1: जी जी,
0: हमें बच्चों को अंजलि जी बचपन से ये सिखाना चाहिए कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। लड़कों को भी घर के काम करने चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी स्वतंत्रता को समझना सिखाया जाना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: आज की बेटियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं दोस्तों। वे डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक, खिलाड़ी, अधिकारी, उद्यमी और नेता बन रही हैं। वे परिवार की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में भी योगदान दे रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए बेटी को पराया धन या बोझ समझना बिल्कुल गलत है। बेटी परिवार की शक्ति है और समाज की महत्वपूर्ण इकाई है। यदि उसे उचित शिक्षा अवसर दिए जाएं, तो वह अपने परिवार के साथ साथ पूरे राष्ट्र का भविष्य बदल सकती है। अंजलि जी,
1: जी हाँ कशिश, किसी भी समाज की असली प्रगति इस बात से पहचानी जाती है कि वहाँ बच्चों को कितना सुरक्षित, स्वतंत्र और सम्मानजनक वातावरण मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: अगर किसी बच्चे की राह केवल इसलिए सीमित कर दी जाती है क्योंकि वह बेटा नहीं बल्कि बेटी है, तो वह केवल उस बच्चे के साथ ही अन्याय नहीं करते बल्कि उसके साथ जुड़ी अनेक संभावनाओं को भी रोक देते हैं। इसी तरह अगर बेटे को केवल कमाने और परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाली भूमिका में बांध दिया जाए तो वह उसके व्यक्तित्व के दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं को विकसित होने से रोक देते हैं।
0: जी हाँ।
1: हमें अपने घरों में ऐसी संस्कृति बनानी होगी जहाँ बच्चे अपनी पसंद, परेशानी और भविष्य की योजनाओं के बारे में बिना डर के बात कर सके।
0: बिल्कुल।
1: बेटी अगर किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है तो उसे मार्गदर्शन मिले, और बेटा किसी अगर क्षेत्र में कुछ अलग चुनना चाहता है तो उसे भी समझने और सीखने का अवसर मिले। बच्चों की तुलना एक दूसरे से करने के बजाय उसकी व्यक्तिगत खूबियों को पहचानना ज्यादा जरूरी है। कई बार कशिश परिवारों में संसाधन सीमित होते हैं, ऐसे में भी बराबरी का अर्थ केवल पैसे खर्च करना नहीं, बराबरी का अर्थ समय देना, भरोसा करना, बात सुनना, प्रोत्साहित करना और जरूरत पड़ने पर साथ खड़ा होना होता है।
0: बिल्कुल।
1: अगर श्रोता साथियों, परिवार बेटी की छोटी सफलता को भी महत्व देता है, उसकी मेहनत की सराहना करता है और उसे अपनी बात रखने देता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास पैदा होता है।
0: जी जी।
1: और यही आत्मविश्वास आगे चलकर उसे कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की शक्ति देता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है, कुछ छोटी मोटी बातें हैं, आगे और भी महत्वपूर्ण रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि किस तरीके से हमें लड़का और लड़की को एक समान समझने की जरूरत है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, कई बार परिवारों में सीमित संसाधन होते हैं, ऐसे में भी बराबरी का अर्थ केवल पैसे खर्च करना नहीं है। बराबरी का अर्थ है समय देना, भरोसा करना, बात सुनना, प्रोत्साहित करना और जरूरत पड़ने पर साथ खड़े होना। कशित समाज में बदलाव लाने के लिए हमें अपनी भाषा पर भी ध्यान देना होगा।
1: बिल्कुल,
0: लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां यह काम नहीं कर सकती, यह तो लड़कियों का काम है, लड़कों को घर के काम क्यों करने हैं, ऐसे वाक्य सुनने में सामान्य लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन बच्चों की सोच पर गहरा असर डालते हैं। इसकी जगह हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो बच्चों को उनकी क्षमता पहचानने और एक दूसरे का सम्मान करने के लिए प्रेरित करे। स्कूल भी इस बदलाव का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। शिक्षक बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि सहयोग, सम्मान, जिम्मेदारी और समानता का व्यवहार भी सिखा सकते हैं। खेल के मैदान से लेकर कक्षा की गतिविधियों तक, नेतृत्व के अवसर से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक, हर जगह बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर आगे आने का मौका मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: गांव और समुदाय में भी कशिश यह सोच मजबूत होनी चाहिए कि बेटी की उपलब्धि पूरे समुदाय की उपलब्धि है।
1: जी हाँ।
0: जब कोई लड़की पढ़ाई पूरी करती है, हुनर सीखती है, खेल में आगे बढ़ती है, अपना काम शुरू करती है या किसी जिम्मेदारी को संभालती है, तो उसकी क्षमता को केवल उसके परिवार की उपलब्धि न मानकर समाज की सकारात्मक दिशा के रूप में देखना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं कि बेटा बेटी के बीच समानता स्थापित करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि प्रत्येक परिवार की और नागरिक की भी है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, में दहेज, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करना चाहिए। सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन उनका वास्तविक लाभ हमें तभी मिलेगा साथियों जब समाज की सोच भी बदलेगी।
0: बिल्कुल,
1: माता पिता को अंजलि जी अपनी बेटियों पर विश्वास करना होगा, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। क्योंकि दोस्तों, बेटा बेटी एक समान, समान अवसर, समान सम्मान एक ऐसे समाज की कल्पना है जहाँ किसी व्यक्ति का मूल्य उसके लिंग से नहीं बल्कि उसके गुण, प्रतिभा और कर्मों से तय होता है।
0: जी जी,
1: बेटा और बेटी दोनों परिवार की संतान है और दोनों को समान प्रेम, शिक्षा, अधिकार और अवसर और सम्मान मिलना जरूरी है। यदि हम बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर देंगे तो वे न केवल अपने परिवार का नाम रोशन करेंगी बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगी।
0: जी,
1: इसलिए साथियों, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हर बेटी को यह विश्वास देना होगा कि वह किसी से कम नहीं। याद रखिए, बेटी बचाएंगे तो बेटी पढ़ाएंगे भी, बेटा बेटी में भेद मिटाएंगे। समान अवसर, समान सम्मान तभी बनेगा देश महान।
0: जी हाँ कशिश, और सबसे जरूरी बात कि समानता की शुरुआत किसी कानून, योजना या बड़े अभियान के इंतजार से नहीं होती, इसकी शुरुआत हमारे अपने व्यवहार से होती है।
1: बिल्कुल,
0: हम आज ही अपने घर में एक ऐसा काम कर सकते हैं जो बराबरी की दिशा में पहला कदम हो। बेटी से उसके सपने पूछ सकते हैं, बेटे को घर की जिम्मेदारी से दे सकते हैं और दोनों बच्चों की बात ध्यान से सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: किसी ऐसे भेदभाव को रोक सकते हैं जिसे हम लंबे समय से सामान्य मानते हैं।
1: जी हाँ।
0: जब एक परिवार अपनी सोच बदलता है तो एक घर का वातावरण बदलता है। जब कई परिवार अपनी सोच बदलते हैं तो मोहल्ला और गांव बदलता है। और जब गांव और समुदायों में समानता की सोच मजबूत होती है तो समाज की अगली पीढ़ी अधिक न्यायपूर्ण और संवेदनशील बनती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए आज का संदेश केवल बेटियों के लिए नहीं पूरे परिवार और पूरे समुदाय के लिए है। बच्चों को यह महसूस कराए कि उनके सपनों की कोई सीमा केवल उनके बेटा या बेटी होने के कारण तय नहीं होती। उन्हें मेहनत करने दीजिए, सीखने दीजिए, गलतियों से आगे बढ़ने दीजिए और अपनी पहचान बनाने का अवसर दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि जिस समाज में बच्चों की क्षमता और उसके लिंग से उसे तोला जाता है तो उसके हुनर, मेहनत से उसे पहचान देनी चाहिए। वही समाज वास्तव में मजबूत भविष्य की नींव रखता है। इसलिए हमें अपने घर से शुरुआत करनी है कि भेदभाव को पीछे छोड़े, बच्चों पर भरोसा बढ़ाएं और ऐसी पीढ़ी तैयार करें जो बराबरी को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने जीवन के व्यवहार में उतारे।
1: यही
0: सच्चा सम्मान है, यही जिम्मेदारी, यही जिम्मेदार परिवार की पहचान है और यही एक बेहतर समाज की ओर हमारा मजबूत कदम है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में बातें हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं और अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे कार्यक्रम का पता हम हमारे दोस्तों को बता दें।
0: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
1: बिल्कुल।
0: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
0: नमस्कार।
1: साथी दोस्तों आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: भाई ने बोलू आप कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह या आपड़े ने कितनी शांति मिले है जी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है हो भाई अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा
1: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो
0: होवे आज नाना कदम है ये अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है
1: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश।

देश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजोडवारा उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है सूर, गीत के बोल ही कभी शाम ढली तो मेरे दिल में आना। इस गीत की फरमाइश करता है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं जौनपुर से, इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवीद इरशाद, अजात अबू समझी। बनारस से जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरिन अंसारी, आफिया परवीन जी। जनकपुरी सहारनपुर से जुड़ रहे हैं जॉन डिकिस्टो, रोजी डिकिस्टो, पल डिकिस्टो, विलिज डिकिस्टो। भागपत से जुड़ना चाह रहे हैं आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है सुर और गीत के बोल ही कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आना। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, कभी शाम ढली तो मेरे दिल में आ जाना। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जमशेदपुर से। फिल्म का नाम है प्रेम रोग, गीत के बोल हैं ये गलिया ये चौबारा। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और इस गीत के अनुरोध करता है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पपीजी भाटिया, छुरी छत्तीसगढ़ जीरा कोरबा से जुड़ना चाह रहे हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना हरी, प्रिया जी ठाकुर और भी श्रोता साथ जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बलाई छत्तीसगढ़ से दीपक खटक, प्रमिला खटक, चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रहे हैं सुरेश डोमिन, शालिनी जी डोमिन, लाहौरा से जुड़ना चाह रहे हैं डोली और प्रभा जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं रायगढ़ बिहार से उमा राज, दीपक उमा, रमेश उमा, जगदीश उमा, अरविंद जी उमा। खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कुमारी, सपना ताई, राकेश ताई। डुमराव से जुड़ रहे हैं लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, स्टार मोहम्मद समी जी। चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रहे हैं महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव, नरेंद्र जी यादव। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है प्रेम रोग, गीत के बोल हैं ये गलिया ये चौबारा। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए सुनते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में है।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवर लाल, गीत की बोल है परदेसी ये सच है पिया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है रूपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुन्नाचार्य बक्सर शहर से फातिमा राज, बेबी अंसारी, डब्ल्यू जी अंसारी। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। इसी बीच जुन्नाचार्य धनुरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही परदेसी ये सच है पिया। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागट रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दिल्ली से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम। गीत के बोल हैं पंची सुर में गाते हैं। इस गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण जी ने और इस गीत के अनुरोध करता है दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिसा नायाब जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायरा जी सुरेशी। इसे भी जुड़ना चाह रहे जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशा ने निमित आहूजा जी। इस गीत के अनुरोध करता है अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका, नमद गुरशब्द, गुरकीरत सिंह राहुल, मन्नर मन्नत और विजय जे जान जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही पंची सुर में गाते हैं। इस गीत को आवाज़ दी है उदित नारायण जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत की बोल थी पंची सुर में गाते हैं। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिहार कॉलोनी दिल्ली से। फिल्म का नाम है मोहब्बतें, गीत के बोल ही पैरों में बंधन हैं। इस गीत की फरमाइश करता है तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना, रिधानजी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से जुड़ रही सिद्धार्थ गुड़ानी, अर्चनाताई गुड़ाने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शेंडी, प्रतिभाजी गुड़ाने, महेश राम टेके जी। बागपत से जुड़ना चाह रहे जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मनीष देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही पैरों में बंधन है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वागट रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भद्रावती से। फिल्म का नाम है बेवफा, गीत की बोल है एक दिल रुबा है। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है अब्दुल्लोही वाला शाहिदा शेख, शाहिद शेख अब्दुल्ला जी शेख और भी श्रोता साथी जुनाचारी संगमोगी से बाबा साहेब कणक्कर, परमेश्वरी रोहिणी श्रावणेश्वरी कणक्कर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। सलार पिलगाम कश्मीर से जुड़ना चाह रहे हैं पीरजादा मिराजुद्दीन नजमुद्दीन केसरुद्दीन जी। मराठवाड़ा से जुड़ रहे हैं सैयद मशरूम, सायना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम जी और सदाम जी, रामभाव तनवे जी। जौनपुर से जुड़ना चाह रहे हैं इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरत अबुसम जी। बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है बेवफा, गीत की बोल है मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है। इस गीत को आवाज दी है उदित नारायण जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दिल्ली से। फिल्म का नाम है आशा। गीत के बोल ही शीशा हो या दिल टूट जाता है। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है राज खोरवाल, रानी खोरवाल, प्रभाजी खोरवाल और प्रकाश जी खोरवाल। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं पुराना तालाब डुमराव से वल्ली उल्ला अंसारी, असमाना अंसारी, शबनम बानो। जेल रोड बक्सर से जुड़ रहे हैं राज एडी अंसारी, फातमा नाज। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं सतीश अनेजा, बिमला जी अनेजा। और भी साथी जुड़ रहे हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अपनव जी नामदेव। कोका बलाई से जुड़ना चाह रही हैं उत्तम सिंह जंगील, मोरज जंगील, अनिल कुमार जंगील, अजित कुमार जंगील, आरुषि जंगील, नंदिनी जी जंगील। और सुखरी कला से जुड़ रहे हैं अमित जंगील, सुकुन जंगील, आरुषि, ओशिका, आदित्य जी और अंजलि जी जंगील। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही शीशा हो या दिल टूट जाता है। फिल्म का नाम है आशा और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस प्यारे से गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सनावत सी। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी, गीत के बोल हैं ओ मेरे दिल के चैन। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद हासिम, मोहम्मद इशाक जी और बब्बू टब्बू जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं भीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिट्टू, पीपी गुतलेश जी और बिरजू परदेसी जी। भीड़ शहर से जुड़ रहे हैं ज्येष्ठी मेलेत्रे कविता, पुष्पा अग्रवाल, कमल कुतले, मंजूश्री और मीरा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, आनंद राठौड़, श्रीमती गिरिजा जी राठौड़, लोकी जोशी, श्रीमती पायल जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, बीबी वेदई जोशी। खंडवा मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे श्रीमती जयवंती जी केवट और बस्तर से जुड़ रही हैं पूनम नायडू जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ओ मेरे दिल के चैन। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी और इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। हाजिर हो गई हूं श्रोता साथियों, फिर से आप सभी के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश में जुड़ चुकी हूं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला हमारा आपके साथ रोज़ाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच श्रोता साथियों, आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए जुड़े हैं और आप भी अपनी फरमाइश की गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ज़रूर पहुंचा सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है साथियों, आपको लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहां का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414082643 पर। श्रोता साथियों, इस नंबर को मैं फिर से बताना चाहूंगी, क्योंकि इसी नंबर के जरिए आप अपने राय सुझाव और अपने पसंदीदा नगमे हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात हमारी आगे बढ़ेगी। श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला सुबह 11 बजे से चल रहा है, इसी बीच बढ़ते हैं फिर से अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है, हमारे बीच में जुड़ चुका है, फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तो अनाड़ी। गीत के बोल हैं साथियों, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। ये फरमाइश हमारे बीच गांटोल से आई है। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं संजीव जी, कमलेश जी, रोहित, वजेंद्र जी, अरुण, गणेश लाल जी, जसवंत, संजय, अखिलेश जी, हेमराज मीणा जी, चरण सिंह, श्याम प्रसाद जी, और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में जुड़ रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी पाड़ी कला से हैं पुष्पा कुमार, हेमंत टेलर, रमेश लाल, प्यारे लाल, श्याम लाल, घनश्याम, राधेलाल, लाला।

राम अरविंद राहुल जसवंत कमंडीलाल जी, मेघराज वीणा जी, कपिल शर्मा जी इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। और भी दोस्त बड़ोदिया से सतराम हरियालाल, हेमंत, आकाश, देवेश, विपिन शर्मा, हरेंद्र विकास दंपत्य, शाम्बू लाल जी, श्यामू लाल जी, रामलाल, पंकज, राहुल शर्मा जी और मेघराज मीणा जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था और इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है। मैं आपको बताना चाहूँगी बांसवाड़ा से, फिल्म का नाम है साथियों राजा हिंदुस्तानी। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूँगी बांसवाड़ा से पंकज जी, रामलाल जी, श्यामलाल जी, मेघराज मीणा जी, हरिशंकर जाधव जी, धमराज जाधव जी, आनंद जी, प्रदीप शिरोमान, संतोष सुरेश, मोहन कल्याण जी। इसी बीच तलवाड़ा से जुड़ना चाह रहे हैं संजय आमिटा जी, सीताराम जी और सतराम जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन कर रहे हैं। श्रोता साथी जुड़ रहे हैं सत्येंद्र कुमार, नरेश चौहान, जयशवर्धन मीनारिया जी, सत्यम मीणा, शिवम, संजीव, कमलेश, रोहित, वजेंद्र, अरुण, गणेश लाल, जसवंत, संजय, अखिलेश, हेमराज मीणा जी, चंद्रत सिंह जी, चरण सिंह जी और श्याम प्रसाद जी, राहुल जसवंत जी, प्यारे लाल श्यामलाल जुड़ रहे हैं मेरठ से, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान मास्टर जी, विम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है रायबरेली से। फिल्म का नाम है विजय पथ। गीत के बोल हैं राह में उनसे मुलाकात हो गई। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में अखिलेश यादव जी, संजय जसवंत, गणेश लाल जी, अरुण वजेंद्र रोहित जी, कमलेश संजीव डाबे राव, शिवम सत्यम मीणा जी, जयवर्षन मेरारिया जी, सत्येंद्र कुमार जी, हरिप्रसाद जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी, श्रोता साथी जुड़ रहे हैं भाटापारा से, सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, दनेश तिवारी, अंकिता जोशी, विधेयी जोशी और भी जो दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ से, निकिता शर्मा, अरविंद जी, राजेश शर्मा जी, राजकुमार, नरेश चौहान जी, गणपतपुरा से हैं मुकेश शर्मा, महेंद्र कुमार, वीरेंद्र, शैलेंद्र, सत्यम, रानी जी, प्रतापपुर से सुरेंद्र मीणा जी, देवेंद्र प्रजापत, अभिनव, दयाल शर्मा जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं राह में उनसे मुलाकात हो गई। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश आई है घाटोल से, फिल्म का नाम है हीना, गीत के बोल हैं देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। इस प्यारे से गीत को आवाज़ दी सुरेश वाडकर, लता मंगेशकर जी ने। फरमाइश करते हैं इस गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं घाटोल से हंसराज सिंह जी, विकास दायमा, वीरेश चौहान, मिथिलेश जी, वीरेंद्र, देवेंद्र कटारा जी, राधेलाल जी, संदीप चौहान, गणेश लाल जी, रामेश्वरम जी, अवधेश जी, सुंदरलाल, दीपक कुमार, अनूप चौहान, मेघराज मीणा जी। और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, जुड़ रहे हैं पन्ना लाल, जसवंत कुमार, रविशंकर गुप्ता, रमेश प्रसाद, बंटी प्रजापत जी, सूरपुर से मनोहर हनुमंत जी, ओमकार रावत जी, सीताराम कागड़ा, बबीता बोध, निखिल कागड़ा, अंकित कागड़ा, तन्वी बोट, राधेलाल, दिनेश चंद्र, विशाल, संदीप पांडे जी, रायबरेली से जुड़ रहे हैं। इसी बीच कुशलगढ़ से हैं अभिषेक कटारा, अनिल कुमार डामोर, सुरेंद्र चौहान, श्याम सुंदर, शंकर, दीपचंद्र प्रकाश, हरिशंकर, दयाराम प्रजापति जी, हरिंद्र कुमार और सीताराम जी। तो आइए साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की। और अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी बड़ोदिया से। फिल्म का नाम है साथियों। राजा गीत के बोल हैं, झुकी झुकी नज़र तेरी कमाल कर गई। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं पन्ना लाल जी, जसवंत कुमार, रविशंकर गुप्ता, रमेश प्रसाद, बंटी प्रजापत, मनोहर जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं राय बरेली से हनुमंत जी, ओमकार रावत, सीताराम, राधेलाल, दिनेश चंद्र, विशाल, संतेश पांडे जी, सतीश जी और मेघराज मीणा जी। इसी बीच और भी श्रद्धा साथी जुड़ना चाह रहे हैं हरिचरण कुमार जी, सुरेंद्र चौहान, श्याम सुंदर चौहान, दीप चंद्र बांसवाड़ा से जुड़ रहे हैं, हरिशंकर दयाराम प्रजापति, हरेंद्र कुमार सियापुर से जुड़ रहे हैं। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं दयाल शर्मा, अभिनव शर्मा, देवेंद्र प्रजापत, सुरेंद्र मीणा, प्राणी सत्यम, शैलेंद्र, वीरेंद्र, इमरत और महेंद्र जी। तो आइए साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, झुकी झुकी नज़र तेरी कमाल कर गई। तब तक आप बनी रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी जोधपुर राजस्थान से। फिल्म का नाम है, गीत के बोल हैं श्रोता साथियों, तारे हैं बाराती। फरमाइशकर्ता जुड़ना है, जुड़ रहे हैं श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूंगी सुंदरलाल अवधेश रामेश्वर, गणेशलाल, संदीप चौहान, राधेलाल, देवेंद्र कटारा जी। इसी बीच हमारे और भी साथी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, चित्तौड़ से निकिता शर्मा, अरविंद, राजेश शर्मा, राजकुमार, नरेश चौहान जी, मुकेश शर्मा, महेंद्र, इमरत, वीरेंद्र जी, शैलेंद्र, सत्यम प्राणी जी, सुरेंद्र मीणा जी, देवेंद्र प्रजापत, अभिनव दयाल शर्मा जी। और भी हमारे दोस्त हैं जो इस गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, गंजुडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, कलीम अंसारी जी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इस गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, विशाल, दिनेश चंद्र, निनामा जी, राधेलाल, सीताराम जी, ओमकार रावत, हनुमंत जी, मनोहर, बंटी प्रजापत जी, रमेश प्रसाद, रविशंकर गुप्ता, जसवंत कुमार, पन्नालाल जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की। और अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है विवाह फिल्म का, मिलन अभी आधा अधूरा है। फरमाइश करता है इस गीत को सुनना चाह रहे हैं राय बरेली से मेघराज मीणा, सतीश पांडे, विशाल दिनेश चंद्र जी, राधेलाल सीताराम, ओमकार रावत जी, मनोहर शर्मा, बंटी प्रजापत, रमेश प्रसाद, रविशंकर गुप्ता जी। इसी बीच और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं, सूरपुर से दीपचंद्र जी, प्रकाश शर्मा, हरिशंकर, दयाराम प्रजापति, हरेंद्र कुमार जी। और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, मेघराज मीणा, अनूप चौहान, दीपक कुमार, सुंदरलाल, अवधेश रामेश्वर जी, गणेशलाल नीनामा, संदीप चौहान, राधेलाल, देवेंद्र कटारा जी। और भी हमारे साथी जुड़ रहे, विकास शर्मा, हंसराज शर्मा जी, शैलेंद्र सत्यम जी, प्राणी जी और सुरेंद्र मीणा, देवेंद्र प्रजापत जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं, अनिल कुमार गोड़के, विशानी अलिल, प्राजक्ता गोड़के, विष्णवी गोड़के, गायत्री गोड़के। इसी बीच जुड़ना चाह रहे कलानोड से नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मिलन अभी आधा अधूरा है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

0: मन प्रसन्न हो गया। कितना अच्छा हो अगर पूनम और प्रेम यहाँ के हर मंदिर के दर्शन कर सके।
1: श्रोता साथियों, आपको बताना चाहूंगी कि इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम आपकी फरमाइश यही समाप्त होता है। हमें उम्मीद है साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी फरमाइश के गीत रहे आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और अपने फरमाइश के गीत भेज भी सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9414082643 पर। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारे आज के सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसके बाद हम रुख करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेशर और इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होंगे हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे ठीक 8 बजे। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुख करेंगे गजलों की ओर। सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व अनुकरो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
0: भाइयों ने बोनो, जेवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं। वन अधिकार सिर्फ कानून नती, माँ जंगल थकी जुड़ियो बोनो नो रिश्तो है, जे जंगल में हमसे हैं ई इन्होंने रक्षा करे हैं, तो आवो बोना ने भागीदारी बढ़ावा, ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल नो भविष्य सुरक्षित करा। बोना ने आवाज विकास ने असली पहचान है।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, आज का जिया बुढ़ापा तनाव मुक्त होगा। यानी कि श्रोता साथियों, यदि हम आज अपने शरीर मन और रिश्तों का ध्यान रखेंगे तो आने वाला बुढ़ापा स्वस्थ खुशहाल और तनाव मुक्त हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि विषय है आज का जिया बुढ़ापा तनाव मुक्त होगा।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं आज का जिया बुढ़ापा तनाव मुक्त होगा।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं जागृति जी कि अक्सर लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे की चिंता तो बाद में करेंगे, लेकिन सच ये है श्रोता साथियों कि बुढ़ापा अचानक नहीं आता।
1: जी हाँ,
0: बल्कि हमारी आज की जीवन शैली ही उसे आकार देती है। यदि युवावस्था में हम अच्छी आदतें अपनाएंगे, तनाव को सही तरीके से संभालते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, तो उम्र बढ़ने के साथ जीवन अधिक संतुलित और सुखद बनता है।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि स्वस्थ बुढ़ापे का पहला आधार है अच्छा स्वास्थ्य, नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और भरपूर नींद शरीर को लंबे समय तक सक्रिय बनाए रखती है। छोटी छोटी अच्छी आदतें भविष्य में बहुत बड़ी बीमारियों से हमें बचा सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ साथ तनाव हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन उसे संभालने की कला सीखनी बहुत जरूरी है।
0: जी जी।
1: ध्यान, योग, संगीत, किताबें पढ़ना और प्रकृति के बीच समय बिताना मन को शांत रखते हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति उम्र बढ़ने पर भी सकारात्मक रहता है।
0: बिल्कुल जागृति जी। साथ ही श्रोता साथियों, अगर रिश्तों की बात करें तो परिवार, मित्र और समाज हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।
1: बिल्कुल,
0: यदि आज हम जागृति जी रिश्तों को सम्मान देंगे, संवाद बनाए रखेंगे और अपनापन बढ़ाएंगे तो बुढ़ापे में अकेलापन कम महसूस होगा हमें। आज श्रोता साथियों, छोटी छोटी बचत जो है वो भविष्य में बड़ी सुरक्षा बन सकती है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में आप अनावश्यक खर्च से बचें, नियमित बचत करते रहें और आर्थिक अनुशासन अपनाते रहें, क्योंकि आर्थिक सुरक्षा तनाव को काफी हद तक कम कर देती है। जागृति जी।
1: बिल्कुल कशिश, सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। नई तकनीक, नई भाषा, नया हुनर या कोई शौक, ये सभी दिमाग को सक्रिय रखते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। साथ ही हमें नशे से दूरी रखनी होगी। आजकल हम देखते हैं कि हमारे युवा साथी कोई भी तनाव होता है तो नशा करने लग जाते हैं, तो हमें नशे से दूरी बनानी होगी। श्रोता साथियों, तंबाकू, शराब और अन्य नशे शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे दूर रहकर हम अपने भविष्य को और अधिक सुरक्षित और स्वस्थ बना सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी। साथी दोस्तों, सकारात्मक सोच को अपनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर परिस्थिति में शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने की आदत हमें विकसित करनी चाहिए। ऐसे में सकारात्मक सोच जीवन में आशा और ऊर्जा बनाए रखती है। साथ ही जागृति जी, हमारे युवा साथियों को सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। इसी के साथ दूसरों की मदद करना और सामुदायिक कार्यों में सहयोग देना श्रोता साथियों हमारे जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। ऐसे लोग बुढ़ापे में भी सक्रिय और खुश रहते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, हम देखते हैं कि जीवन एक लंबी यात्रा है। पहले हमारा बचपन आता है, फिर युवावस्था, युवावस्था से फिर प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था से फिर बुढ़ापा।
0: जी जी।
1: श्रोता साथियों, हर पड़ाव अपने साथ कुछ नया अनुभव, नई सीख और नई जिम्मेदारियां लेकर आता है। हम अक्सर भविष्य को लेकर इतने चिंतित रहते हैं, कभी पढ़ाई को लेकर, कभी करियर को लेकर, कभी परिवार को लेकर, कभी आर्थिक स्थिति की चिंता, तो कभी स्वास्थ्य, तो कभी आने वाले समय की चिंता।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इस भाग दौड़ से हम एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं, भविष्य की खुशहाली की शुरुआत आज से ही होती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए कहा जा सकता है कि आज में जिए बुढ़ापा तनाव मुक्त होगा।
0: जी हाँ।
1: इसका अर्थ केवल ये नहीं है दोस्तों कि हम भविष्य की चिंता बिल्कुल ना करें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम आज को समझदारी से जिए, अपनी अच्छी आदतों को मजबूत करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रिश्तों को समय दें, आर्थिक अनुशासन अपनाएं और मन को सकारात्मक रखें।
0: बिल्कुल,
1: जब आज मजबूत होगा तो आने वाला कल भी और अधिक सुरक्षित और संतुलित होगा।
0: जी बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि हम हमारे युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बात कर ही रहे हैं कि आज का जिया बुढ़ापे को तनाव मुक्त रखता है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और पैरसिक गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और हम बात कर रहे थे आज में जी ये बुढ़ापा तनाव मुक्त होगा। हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारे समाज में कभी कभी बुढ़ापे को कमजोरी या निर्भरता से जोड़कर देखा जाता है कशिश, जबकि वास्तविकता ये है कि उम्र बढ़ना जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। बुजुर्गों के पास वर्षों का अनुभव है, ज्ञान और जीवन की समझ होती है। वे परिवार और समाज के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे को सुखद बनाने के लिए केवल धन या सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। इसके लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति, अच्छे रिश्ते, आत्मनिर्भरता और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी बहुत जरूरी है। इसीलिए बुढ़ापे की तैयारी उम्र बढ़ने के बाद नहीं बल्कि आज से ही शुरू होनी चाहिए।
1: जी हाँ जागृति जी, युवा साथियों आप याद रखिए कि बुढ़ापा कोई बोझ नहीं होता बल्कि जीवन के अनुभवों का सबसे सुंदर पड़ाव होता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन ये तभी सुखद बन सकता है जब उसकी तैयारी आज से शुरू की जाए। जागृति जी, अपने शरीर का सम्मान करें दोस्तों, मन को शांत रखें और परिवार से जुड़े रहें, साथ ही समाज के लिए उपयोगी बने। आपकी हर दिन की एक नई शुरुआत, आपका आज लिया गया एक अच्छा निर्णय दोस्तों आने वाले वर्षों को बेहतर बना सकता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए आज से ही आप ये बात जान लें कि हम ऐसा जीवन जिएंगे जिससे हमारा भविष्य स्वस्थ, सुरक्षित और तनाव मुक्त होगा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम देखते हैं कि उम्र तो सभी की बढ़ती है लेकिन खुशहाल बुढ़ापा उन्हीं का होता है जागृति जी, जो आज अपने जीवन को सही दिशा देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए साथियों अपने स्वास्थ्य, रिश्तों, समय और सपनों का सम्मान कीजिए और आज की अच्छी आदतें ही कल की आपकी मुस्कान बनेगी।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि स्वस्थ बुढ़ापे की सबसे मजबूत नींव स्वस्थ जीवन शैली है। आज हम अपने शरीर के साथ साथ जैसा व्यवहार करेंगे उसका प्रभाव आगे के वर्षों में दिखाई देगा।
1: बिल्कुल,
0: अगर हम संतुलित भोजन करेंगे, पर्याप्त नींद लेंगे, नियमित शारीरिक गतिविधियाँ करेंगे, स्वच्छता और समय समय पर स्वास्थ्य की देखभाल, ये सारी आदतें अगर हम अपनाएंगे तो ये आदतें हमारे जीवन को बेहतर बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, बहुत अधिक तनाव, अनियमित दिनचर्या और स्वास्थ्य की अनदेखी भविष्य में परेशानियां बढ़ा सकती है। इसीलिए हमें अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी अच्छी आदतों को शामिल करना होगा।
1: बिल्कुल,
0: सुबह समय पर उठना होगा, शरीर को सक्रिय रखना होगा, पौष्टिक भोजन लेना होगा, पर्याप्त पानी पीना होगा और पर्याप्त आराम करना होगा।
1: जी हाँ,
0: ये साधारण बातें भविष्य के लिए बड़ी पूंजी बन सकती है।
1: बिल्कुल,
0: हम शरीर की देखभाल तो करते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मन की थकान को नजरअंदाज कर देते हैं, लगातार चिंता करते रहते हैं, तनाव करते रहते हैं, नकारात्मक सोच अपनाते रहते हैं, अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं, मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है ये सारी चीजें। आज से ही हमें अपने मन को भी समय देना होगा श्रोताओं, कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना, किताब पढ़ना, संगीत सुनना, प्रार्थना या ध्यान करना, अपनी पसंद के काम करना और परिवार के साथ बातचीत करना, ये सारी बातें मन को हल्का भी करती है कशिश। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर समस्या को अकेले सहने के बजाय विश्वास पात्र व्यक्ति से बात करना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: बातचीत मन का बोझ कम करती है और रिश्तों में मजबूती लाती है।
1: जी हाँ,
0: अगर आज हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को महत्व देंगे तो भविष्य में भी हम बदलती परिस्थितियों का सामना अधिक संतुलित तरीके से कर पाएंगे।
1: बिल्कुल जागृति जी, ये बात आपने सही कही। इसी के साथ हम देखते हैं कि कई लोग सेवानिवृत्ति के बाद खुद को बेकार महसूस करने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जिससे श्रोता साथियों तनाव और अवसाद बढ़ सकता है। ऐसे में यदि व्यक्ति जीवन भर किसी उद्देश्य के साथ जीने की आदत बनाए रखता है, जैसे कि समाज सेवा, खेती में नवाचार, बच्चों को पढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण या किसी कला को आगे बढ़ाना साथियों, तो बुढ़ापे में भी उसका जीवन उत्साह और आत्मसम्मान से भरा रहता है।
0: जी हाँ,
1: कई लोग अपनी परेशानियां किसी से नहीं बताते जिससे मानसिक तनाव बढ़ जाता है जागृति जी।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में परिवार, मित्रों या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से खुलकर बात करने की आदत साथियों आपके मानसिक बोझ को कई हद तक कम करती है। संवाद हर उम्र में मन को हल्का और रिश्तों को मजबूत बनाता है जागृति जी।
0: बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कशिश की धन और संपत्ति जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अच्छे रिश्तों का कोई विकल्प नहीं है।
1: जी,
0: परिवार, मित्र, पड़ोसी और समाज से जुड़े संबंध हमें अपनापन और सुरक्षा का एहसास देते हैं। आज हम देखते हैं कशिश की व्यस्त जिंदगी में लोग एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से बातचीत के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। मोबाइल और डिजिटल दुनिया ने संवाद को आसान बना दिया है लेकिन आमने सामने बैठकर बातचीत करने का महत्व आज भी बना हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि अगर हम आज अपने रिश्तों में सम्मान, विश्वास और संवाद बनाए रखेंगे तो उम्र बढ़ने पर अकेलेपन की भावना कम होगी।
1: बिल्कुल,
0: किसी बुजुर्ग के पास बैठकर उनकी बात सुनना, परिवार के साथ भोजन करना, मित्र से हालचाल पूछना या पड़ोसी की मदद करना, ये छोटी छोटी बातें रिश्तों को मजबूत बनाती है।
1: जी हाँ जागृति जी, साथियों जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि समय कभी रुकता नहीं है। बचपन से युवावस्था, युवावस्था से बुढ़ापे तक का यह सफर हर व्यक्ति तय करता है जागृति जी।
0: जी हाँ,
1: बस फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि कोई इस सफर को चिंता, बीमारी और अकेलेपन के साथ जीता है, तो कोई इसे आत्मविश्वास, सम्मान और खुशियों के साथ जीता है। याद रखिए युवा साथियों, तनाव मुक्त बुढ़ापा किसी किस्मत का परिणाम नहीं है
0: जी,
1: बल्कि आज की अच्छी आदतों का प्रतिफल होता है। यदि हम आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपने मन को सकारात्मक रखेंगे दोस्तों, और रिश्तों को मजबूत बनाएंगे, समय का सही उपयोग करेंगे और समाज से जुड़े रहेंगे, तो आने वाले वर्षों में हमारा जीवन अधिक सुरक्षित, संतुलित और सुखद होगा।
0: बिल्कुल,
1: हम सभी को मिलकर ये छोटा सा संकल्प लेना है कि हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए हम थोड़ा सा समय निकालेंगे, मन को तनाव से दूर रखेंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे, दूसरों की मदद करेंगे और ऐसी आदतें अपनाएंगे जागृति जी, जो हमारे आने वाले जीवन को खुशहाल बनाए।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि उम्र पड़ने के साथ सीखने की प्रक्रिया बंद नहीं होनी चाहिए। नई चीज सीखने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में उत्साह बना रहता है।
1: बिल्कुल,
0: आज से ही पढ़ने, सीखने और अपने हुनर को विकसित करने की आदत डालें, तकनीक सीखी, कोई भाषा सीखी, खेती या हस्तकला से जुड़ा नया ज्ञान प्राप्त करें, संगीत सीखे या कोई रचनात्मक काम करें। जब व्यक्ति सीखता रहता है कशिश, तो वो खुद को उपयोगी और सक्रिय महसूस करता है।
1: जी हाँ।
0: इसीलिए श्रोताओं, उम्र चाहे कोई भी हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि हम में से बहुत से लोग या तो बीते समय की गलतियों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं, इस कारण वर्तमान का वो लोग आनंद खो देते हैं। श्रोताओं, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और भविष्य अभी हमारे सामने है नहीं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे पास वास्तव में जो समय है वो है आज का दिन और ये पल। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भविष्य की योजना न बनाए, बल्कि योजना बनाकर फिर वर्तमान पर ध्यान दें। आज
1: हाँ।
0: का जो काम हमारे हाथ में है उसे अच्छे से करें। आज परिवार के साथ है तो परिवार के साथ ही रहे। आज पढ़ाई कर रहे हैं तो मन लगा कर करें। आज काम कर रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी से करें।
1: बिल्कुल,
0: वर्तमान को बेहतर बनाना ही भविष्य को बेहतर बनाने का सबसे सरल रास्ता है।
1: जी हाँ जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं इस गीत को।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और अंत में बस आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि तनाव जीवन का हिस्सा हो सकता है पर उसे जीवन पर हावी नहीं होने देना है।
1: बिल्कुल,
0: हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता है कशिश, कुछ परिस्थितियों को समय देना पड़ता है। ऐसे समय में अपनी प्राथमिकता तय करें, जरूरी कामों पर ध्यान दीजिए और जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है उन्हें लेकर लगातार चिंता न करना मददगार हो सकता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इन्हीं बातों के साथ अब हम कार्यक्रम से विदा लेते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
0: हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
1: जी हाँ।
0: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
0: नमस्कार।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सच्चा बचपन में जब भी हमारी आपसे मुलाकात होती है तो कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ता है। आज हम कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जानने वाले हैं। आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या आपने कभी किसी बच्चे को ध्यान से देखा है? जब वो छोटा होता है तो उसे गिरने से डर नहीं लगता। वो बार बार कोशिश करता है, बार बार गिरता है और फिर उठता है और हर बार मुस्कुराकर फिर से चलने की कोशिश करता है। लेकिन श्रोता साथियों, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी हिम्मत ये मुस्कान कहीं खो जाती है और एक दिन वही बच्चा कहता है मैं नहीं कर सकता। तो सोचिए दोस्तों, ये मैं नहीं कर सकता कहाँ से आया? क्या ये बच्चा पैदा ही डर के साथ हुआ था? नहीं, ये डर धीरे धीरे उसके अंदर डाला गया हमारे शब्दों से, हमारी उम्मीदों से और कभी कभी हमारी डांटों से। जब बच्चा पहली बार गलती करता है तो वो डरता नहीं, लेकिन जब उसे उसी गलती के बदले डांट मिलती है, ताने मिलते हैं, तुलना मिलती है, तब उसके अंदर श्रोता साथियों एक डर जन्म लेता है। गलती करने का डर, कोशिश करने का डर और हार जाने का डर। तो साथियों, आज हम इसी डर की बात करेंगे और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी खोजेंगे। आज हमारे कार्यक्रम का विषय है गलती करना बुरा नहीं है, गलती से न सीखना बुरा है, क्योंकि जिंदगी में कोई भी इंसान बिना गलती किए कुछ नहीं सीख सकता। तो आज कार्यक्रम में सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपको आपके अपने घर की याद दिला दे और आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि कहीं हम ही तो अपने बच्चों को गलती करने से डरना नहीं सिखा रहे। तो कार्यक्रम में बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको कहा था कि आज कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं कि गलती करना बुरा नहीं है, गलती से न सीखना बुरा है। और जैसा कि अंत में मेरा सवाल था जो हम खुद से करने वाले हैं कि कहीं हम ही तो नहीं जो अपने बच्चों को गलती करने से डरना सिखा रहे हैं, तो जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि किस तरीके से हम कुछ गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए।
1: अरे रीना, मैं सच में बहुत परेशान हो गई हूँ। समझ नहीं आता आजकल बच्चों को हो क्या गया है। मेरा बेटा जैसे कोई काम शुरू करता है थोड़ी सी गलती होते ही घबरा जाता है और किताब बंद कर देता है और कहता है कि मुझसे नहीं होगा मम्मी। कल ही के बाद देख लो कि होमवर्क करते समय एक सवाल गलत हो गया उससे और उसने पूरा का पूरा काम ही छोड़ दिया। रोने लगा और गुस्सा करने लगा, साथ ही वह खुद को ही दोष देने लगा और वह कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। मैं उसे समझाने की कोशिश करती रहती हूँ लेकिन शायद मैं भी गुस्से में उसे डांट ही देती हूँ और जिससे वह और भी ज्यादा डर जाता है। अब तो हालत ये हो गई है कि वह नया कुछ सीखने से भी डरने लगा है।
2: सीमा, जो तुम बता रही हो ना, ये सिर्फ तुम्हारे घर की कहानी नहीं है बल्कि आजकल बहुत सारे घरों की सच्चाई है। बच्चों का डर असल में गलती से नहीं होता बल्कि उस माहौल से होता है जो हम उन्हें देते हैं। जब बच्चा छोटी सी गलती करता है और उसे तुरंत डांट मिलती है या यह सुनने को मिलता है कि तुमसे नहीं होगा, तो उसके मन में एक डर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि गलती करना मतलब बुरा होना है और यही सोच धीरे धीरे उसे कमजोर बना देती है। सीमा, असल में बच्चा गलती करने से नहीं डरता बल्कि उस प्रतिक्रिया से डरता है जो उसे गलती के बाद मिलती है।
1: बिल्कुल, तो क्या हम ही बच्चों को डराना सिखा रहे हैं? लेकिन रीना, गलती तो गलत ही होती है ना। अगर हम उन्हें ये नहीं बताएंगे कि ये गलत है तो वह कैसे सुधरेंगे?
2: गलती गलत नहीं होती सीमा, गलती तो सीखने का सबसे पहला कदम होती है। सोचो, जब बच्चा चलना सीख रहा था तब वह कितनी बार गिरा था। अगर उस समय हम उसे कहते कि तुमसे नहीं होगा, मत चलो, तो क्या वह कभी चल पाता? नहीं ना। असल में गलती हमें बताती है कि हमें क्या सुधारना है। अगर गलती न हो तो सीखने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसीलिए बच्चों को सिखाना जरूरी है कि गलती करना बुरी बात नहीं है बल्कि गलती से न सीखना बुरा है।
1: अब मुझे समझ आ रहा है, शायद मैं ही उसे ज्यादा डांट देती हूँ। जब वह गलती करता है तो मैं उसे गुस्से में ये कह देती हूँ कि तुम ध्यान क्यों नहीं देते या तुम हमेशा गलत करते रहते हो। शायद मेरे ये ही शब्द उसे अंदर से तोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसे सही रास्ता दिखा रही हूँ लेकिन अब लग रहा है कि मैं उसे डराना सिखा रही हूँ।
2: बिल्कुल सीमा, गलती करना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि वही हमें बेहतर बनाती है। हमें बच्चों को यह सिखाना है कि जब भी गलती हो तो घबराना नहीं है बल्कि रुक कर सोचना है मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। अगर बच्चा गिरता है तो उसे उठने में मदद करो लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसे यह विश्वास दिलाना कि वह खुद भी उठ सकता है। बच्चों को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, उन्हें मजबूत बनाओ ताकि वो हर गलती से सीख कर बेहतर बन सके।
1: हाँ रीना, आज आपने मेरी सोच बदल दी। अब मैं अपने बच्चे को डांटने के बजाय उसे समझाऊंगी और उसका साथ दूंगी। जब वो गलती करेगा ना तो मैं उसे ये नहीं कहूंगी कि तुम गलत हो बल्कि ये कहूंगी कि तुम सीख रहे हो। अब मैं उसे डर नहीं बल्कि हिम्मत दूंगी ताकि वह हर बार गिरकर और मजबूत बन सके।
2: यही तो असली जीत है सीमा। जब हम बच्चों को सिखा देते हैं कि गलती अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है तो वह कभी हार नहीं मानते। याद रखो, हर बड़ी सफलता के पीछे कई छोटी छोटी गलतियाँ छिपी होती हैं। जो उनसे सीख लेता है वही आगे बढ़ता है।
3: गलती करना बुरा नहीं है, गलती से न सीखना बुरा है। बच्चों को डर नहीं, सीखने का मौका दीजिए।
0: तो श्रोता साथियों, आपने अभी जो कहानी सुनी वो सिर्फ एक घर की कहानी नहीं थी, वो हम सब की कहानी थी। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सबसे अच्छे बने, कभी गलती ना करें, हमेशा सही करें। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि हमेशा सही होना ही सबसे बड़ी गलती है क्योंकि जो कभी गलती नहीं करता वो कभी कुछ नया सीख ही नहीं पाता। तो यह थी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। बातें ढेर सारी हो गई हैं, अब समय हो गया है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का। तो आइए साथियों, आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, गिरो अगर तो उठना सीखो, गलती से कुछ करना सीखो, डर को दिल से दूर भगाओ, हर दिन कुछ नया अपनाओ। इन्हीं बातों के साथ आपको कहना चाहूंगी कि गलती कोई दुश्मन नहीं है, वो तो एक शिक्षक है जो हमें हर बार कुछ नया सिखाने आती है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा दें कि गलती करना शर्म की बात है, तो वो कोशिश करना ही छोड़ देंगे। और जिस दिन बच्चा कोशिश करना छोड़ देता है, उस दिन उसकी उड़ान रुक जाती है। इसलिए आज एक छोटा सा बदलाव करने की जरूरत है। जब आपका बच्चा गलती करे तो उसे डांटिए मत, उससे समझाइए, उसे ये मत कहिए कि तुम गलत हो, बल्कि ये कहिए कि तुम सीख रहे हो। जब वो गिरे तो उसे उठाइए जरूर, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसे ये विश्वास दिलाइए कि वो खुद भी उठ सकता है। याद रखिए श्रोता साथियों, बच्चों को पंख देने की जरूरत नहीं होती, उनके पंख पहले से ही होते हैं, हमें बस उन्हें उड़ने पर भरोसा देना होता है। और जिस दिन बच्चों को ये भरोसा मिल जाता है श्रोता साथियों कि मैं गलती कर सकता हूँ और उससे सीख भी सकता हूँ, उस दिन वो किसी भी मनुष्य से डरता नहीं है। तो आज से अपने शब्दों को बदलिए, अपने नजरिए को बदलिए और अपने बच्चों से कहिए गलती करो लेकिन उससे सीखो, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। यकीन मानिए श्रोता साथियों, ये छोटे छोटे शब्द आपके बच्चे की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि हर बच्चा बिना डर के सीखे, बिना रुक के आगे बढ़े। तो जैसा कि श्रोता साथियों, बातें ढेर सारी हो गई है और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको कार्यक्रम का पता बताना चाहूंगी, ताकि आपको हमारा आज का कार्यक्रम ये कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व अनुकरो भोजन होवे, क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी तकी एनीमिया रोग आपड़ने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू आ

0: या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
5: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
6: जागृति बोल, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है?
7: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
6: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
7: ओ अंजलि बोन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
6: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
7: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
6: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
8: वाघ रेडियो, वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीबाड़ी हमरवारा हंगर भाई बहनों ने आपनी बहन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बहन आप हमरी रहो आपनु सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणे मान स्वागत करा हूं अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जेम की भाई बहनों अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी जहां कार्यक्रम खेतीबाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाते। तो किसान भाई बहनों आज अमारी कार्यक्रम में आप तक बातचीत नु विषय है कि आपणे जलवायु अनुकूल खेती हरते करी शकां। जेम की आपणे देखी रहो कि घणा कानो आ परिवर्तन जलवायु माते थई रह्यो है ते एने कारण आपणी खेती प्रभावित थई रही है। ते एवं में आपणे ने जलवायु अनुकूल खेती हरते करवी है ई हंगरी वाते आज आपणे कार्यक्रम में करवा वारा हां। तो भाई बहनो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी आप तक घणा कानी वाते थईगा, पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा आपणी वाते। तो किसान भाई बहनों आप हमर दरेजू आपणो रेडियो आपणी वाते वग रेडियो 90.8 FM माते।

0: हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर। स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगर रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हम बात करने वाले हैं छोटा व्यवसाय बड़ा आत्मविश्वास।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, बड़ा बनने के लिए हमेशा बड़ा शुरू करना जरूरी नहीं होता है। कई बार एक छोटी सी दुकान, घर से शुरू किया गया काम, छोटी सी सेवा या अपने हुनर से कमाया गया पहला रुपया भी बड़े सपने की नींव बनता है। अंजलि, छोटा व्यवसाय केवल कमाई का साधन नहीं बल्कि आत्मविश्वास, मेहनत और आत्मनिर्भरता की पहचान भी है।
0: बिल्कुल,
1: जब व्यक्ति अपने विचार और मेहनत पर भरोसा करके छोटी शुरुआत करता है तो धीरे धीरे वही शुरुआत उसके लिए बड़े अवसरों का रास्ता खोल देती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है छोटा व्यवसाय बड़ा आत्मविश्वास को लेकर।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि आपने गीत से पहले बताया था कि कोई भी चीज छोटी नहीं होती है। छोटे जो व्यवसाय होते हैं वो भविष्य की बड़ी सफलता की नींव बनाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज हमेशा पैसा या बड़े संसाधन नहीं होते, बल्कि अपने काम पर विश्वास, मेहनत करने की इच्छा और सीखते रहने का साहस होता है।
0: जी हाँ।
1: छोटा व्यवसाय बड़ा आत्मविश्वास केवल एक विचार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की एक मजबूत सोच है जागृति जी। जब कोई व्यक्ति अपने हुनर, अनुभव और मेहनत के बल पर अपना काम शुरू करता है तो वह केवल आय का साधन नहीं बनाता बल्कि अपने भीतर निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास भी पैदा करता है।
0: बिल्कुल।
1: छोटी शुरुआत व्यक्ति को यह विश्वास दिलाती है कि वह अपने प्रयासों से परिस्थितियों को बदल सकता है। आज के समय में छोटा व्यवसाय स्थानीय अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। छोटी किराना दुकान, सब्जी की दुकान, सिलाई कढ़ाई, हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ का निर्माण, मरम्मत की सेवा, कृषि आधारित काम, पशुपालन, स्थानीय उत्पादों की बिक्री या कोई अन्य छोटा व्यवसाय, ये सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति देते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, अक्सर लोग सफलता को बड़े कार्यालय, बड़ी दुकान, बड़े निवेश या बड़ी कंपनी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अनेक सफल व्यवसायों की शुरुआत बहुत ही छोटे स्तर से हुई है।
1: जी जी।
0: शुरुआत छोटी होने का अर्थ ये नहीं है कि लक्ष्य छोटा हो। छोटा व्यवसाय व्यक्ति को अपने काम को समझने का अवसर देता है। वो ग्राहकों की जरूरतों को पहचानता है, बाजार को समझाता है, खर्च और आमदनी का हिसाब सीखता है और धीरे धीरे अपने काम में सुधार करता है।
1: बिल्कुल।
0: इस तरह हम कह सकते हैं कि छोटी शुरुआत एक तरह का अनुभव विद्यालय बन जाती है। जब व्यक्ति स्वयं अपने काम की जिम्मेदारी उठाता है तो उसमें निर्णय लेने का साहस बढ़ता है। उसे समझ आने लगता है श्रोताओं कि किसी समस्या से घबराने के बजाय उसका समाधान खोजा जा सकता है। यही सोच धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। किसी भी व्यवसाय की शुरुआत में पैसा महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन केवल पैसा ही सफलता की गारंटी नहीं देता। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास, धैर्य, अनुशासन और सीखने की इच्छा भी आवश्यक है।
0: बिल्कुल।
1: आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है दोस्तों कि व्यक्ति को कभी असफलता नहीं मिलेगी। इसका अर्थ है असफलता आने पर भी व्यक्ति दोबारा प्रयास करने का साहस रखे।
0: बिल्कुल।
1: जब कोई व्यक्ति अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है और गलतियों से सीखता है तो जागृति जी हम देखते हैं तो उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है।
0: बिल्कुल।
1: छोटे व्यवसाय में हर दिन एक नई सीख होती है। कभी ग्राहक कम आते हैं, कभी बिक्री घट जाती है, कभी खर्च बढ़ जाता है और कभी बाजार की परिस्थितियां बदल जाती हैं।
0: जी हाँ।
1: ऐसे समय में घबराने के बजाय समस्या को समझना और समाधान तलाशना ही वास्तविक आत्मविश्वास है।
0: बिल्कुल अंजलि, व्यवसाय शुरू करने के लिए हमेशा किसी बड़े शहर या बड़े बाजार की जरूरत नहीं होती है। हमारे आसपास ही बहुत सारी ऐसी जरूरतें होती है जिन्हें समझकर व्यवसाय का अवसर बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि गांव और कस्बों में स्थानीय जरूरतों से जुड़े बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। कृषि से जुड़े उत्पाद, खाद्य पदार्थ, मरम्मत सेवाएं, दैनिक उपयोग की गई वस्तुएं, स्थानीय हस्तशिल्प, परिवहन, पशुपालन से जुड़े उत्पाद और अन्य सेवाएं लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकती है। श्रोताओं, व्यवसाय की शुरुआत अक्सर एक सरल सवाल से होती है, लोगों को किस चीज की जरूरत है और मैं उसे बेहतर तरीके से कैसे उपलब्ध करा सकता हूँ।
1: जी जी।
0: जो व्यक्ति इस सवाल का सही उत्तर खोज लेता है अंजलि, वो अपने आसपास ही अवसरों को पहचान जाता है।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें चल रही हैं इस विषय पर, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है, छोटा व्यवसाय बड़ा आत्मविश्वास को लेकर, यही जागृति जी अब बात आती है हुनर को व्यवसाय में बदलना। जी हाँ दोस्तों, हर व्यक्ति के पास कोई न कोई कौशल या अनुभव होता है।
1: जी हाँ।
0: किसी को खाना बनाने का हुनर आता है तो कोई मरम्मत का काम जानता है, तो कोई खेती से जुड़ा अनुभव रखता है, कोई हस्तशिल्प में कुशल होता है जागृति जी, तो कोई लोगों को अच्छी सेवा देने में सक्षम होता है। जब हुनर को सही दिशा और बाजार से जोड़ा जाता है तो वही कौशल व्यवसाय का रूप ले सकता है।
1: जी हाँ।
0: हुनर को व्यवसाय में बदलने के लिए सबसे पहले अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी है। यदि उत्पाद अच्छा है और सेवा भरोसेमंद है तो ग्राहक दोबारा आने लगते हैं।
1: जी हाँ।
0: धीरे धीरे यही भरोसा व्यवसाय की पहचान बन जाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, छोटे व्यवसाय में ग्राहक से संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बड़ी कंपनियों के पास विज्ञापन और प्रचार के बहुत सारे साधन हो सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन छोटे व्यवसाय के लिए ग्राहक का विश्वास सबसे मजबूत प्रचार हो सकता है। ईमानदारी से व्यवहार करना, सही कीमत लेना, अच्छी गुणवत्ता देना, समय पर सेवा देना और ग्राहक की बात सुनना व्यवसाय को मजबूत बनाता है। हम देखते हैं अंजलि कि एक संतुष्ट ग्राहक अपने परिचितों को भी उस व्यवसाय के बारे में बता सकता है।
0: जी जी।
1: इस प्रकार एक ग्राहक से कई नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। इसलिए व्यवसाय में केवल बिक्री पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, ग्राहक के विश्वास को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, छोटा व्यवसाय हो या बड़ा उद्योग, गुणवत्ता का महत्व हमेशा समान रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता बनाए रखता है तो धीरे धीरे बाजार में उसकी पहचान बनती है।
1: बिल्कुल।
0: कम गुणवत्ता वाले उत्पाद से थोड़े समय के लिए लाभ मिल सकता है, लेकिन श्रोता साथियों, लंबे समय में ग्राहक का भरोसा कम हो सकता है। इसके विपरीत अच्छी गुणवत्ता और ईमानदार व्यवहार व्यवसाय को लंबे समय तक टिकाऊ रखते हैं। इसलिए छोटे व्यवसाय की सबसे बड़ी ताकत यह होनी चाहिए कि ग्राहक यह महसूस करे कि उसे उसके पैसे के बदले सही उत्पाद और अच्छी सेवा मिल रही है। व्यवसाय में मेहनत जितनी जरूरी होती है उतना ही जरूरी है सही हिसाब किताब रखना।
1: जी हाँ।
0: कि कितनी आमदनी हुई है, कितना खर्च हुआ है, कितना पैसा बचा है और कितना पैसा व्यवसाय में वापस लगाया गया है, इन बातों की जानकारी होना आवश्यक है। कई बार जागृति जी, व्यवसाय में कमाई होती है लेकिन खर्च का सही हिसाब नहीं होने के कारण वास्तविक लाभ का पता ही नहीं चलता।
1: जी हाँ।
0: इसलिए शुरुआत से ही आय और खर्च का रिकॉर्ड रखना चाहिए। बचत की आदत व्यवसाय को कठिन समय में सहारा देती है और अचानक कोई खर्च बढ़ जाए या बिक्री कम हो जाए तो बचत व्यवसाय में संभालने में मदद करती है।
1: बिल्कुल अंजलि, हम कह सकते हैं कि कम पूंजी और सही योजना होना बहुत जरूरी है। यानी कि छोटा व्यवसाय शुरू करते समय सीमित पूंजी को ध्यान में रखते हुए योजना बनाना बहुत जरूरी है।
0: जी जी।
1: शुरुआत में आवश्यकता से ज्यादा सामान खरीदना, अनावश्यक खर्च करना या बिना सोचे बड़ा निवेश करना जोखिम बढ़ा सकता है। श्रोताओं, इसके बजाय पहले छोटे स्तर पर हमें शुरुआत करनी होगी, बाजार की प्रतिक्रिया देखनी होगी और ग्राहक की जरूरतों को समझकर धीरे धीरे विस्तार किया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: छोटी शुरुआत का सबसे बड़ा लाभ यही है दोस्तों कि सीखने और सुधार करने का अवसर हमें लगातार मिलता है। आज हम देख रहे हैं कि तकनीक ने छोटे व्यवसायों के लिए नए अवसर खोल दिए हैं। मोबाइल फोन हो गए, डिजिटल भुगतान, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रचार के माध्यम से छोटे व्यवसाय अपने ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पहले किसी स्थानीय व्यवसाय की पहचान केवल आसपास के लोगों तक सीमित रहती थी, लेकिन अब डिजिटल माध्यमों से उत्पाद और सेवाओं की जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सकती है।
0: बिल्कुल।
1: हालांकि तकनीक का उपयोग सोच समझकर करना होगा श्रोताओं, डिजिटल माध्यम सुविधा का साधन है लेकिन व्यवसाय की असली ताकत अभी भी गुणवत्ता, भरोसा और ग्राहक सेवा ही है।
0: बिल्कुल जागृति जी, व्यवसाय के रास्ते में उतार चढ़ाव आना भी स्वाभाविक है।
1: बिल्कुल।
0: हर दिन बिक्री अच्छी हो, हर निर्णय सही साबित हो, हर प्रयास सफल हो, ऐसा जरूरी नहीं है।
1: जी हाँ।
0: कभी कोई योजना काम नहीं करती, कभी ग्राहक की पसंद बदल जाती है और कभी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में असफलता को अंत मान लेना उचित नहीं है। असफलता यह बताती है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान कर उनसे सीखता है तो वह असफलता भविष्य की सफलता का आधार बन सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, व्यवसाय में सफलता एक दिन में नहीं मिलती। शुरुआत में ग्राहक कम आ सकते हैं, आमदनी सीमित हो सकती है और काम करने

0: में कठिनाई भी आ सकती है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति ही धीरे धीरे अपनी जगह बना सकता है। और धीरे का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं होता है जागृति जी, धीरे का अर्थ है काम करते रहना, सीखते रहना और परिस्थितियों के अनुसार खुद को सुधारते रहना।
1: बिल्कुल।
0: एक छोटा व्यवसाय तभी बड़ा बनता है जब उसके पीछे लगातार प्रयास करने की आदत हो।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि ईमानदारी किसी भी व्यवसाय की मजबूत नींव है। ग्राहक के साथ सही व्यवहार, उत्पाद की सही जानकारी और उचित मूल्य व्यवसाय को विश्वसनीय बनाते हैं। श्रोताओं, इसके साथ अनुशासन भी बहुत जरूरी है, जैसे कि समय पर दुकान खोलना, सेवा उपलब्ध कराना, सामान व्यवस्थित रखना, ग्राहकों की बात को सुनना, अपने काम की जिम्मेदारी लेना व्यवसाय को मजबूत बनाता है।
0: बिल्कुल।
1: अनुशासन से काम में नियमितता आती है और नियमितता से भरोसा पैदा होता है। छोटे व्यवसाय केवल एक व्यक्ति की आय का माध्यम नहीं होते, वे स्थानीय बाजार को भी मजबूत बनाते हैं। जब लोग स्थानीय स्तर पर वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं अंजलि, तो पैसा स्थानीय अर्थव्यवस्था में घूमता रहता है।
0: बिल्कुल।
1: स्थानीय व्यवसाय मजबूत होने से बाजार में गतिविधियां बढ़ती रहती है। छोटे दुकानदार, कारीगर, सेवा प्रदाता, उत्पादक और ग्राहक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि छोटे व्यवसाय समाज की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए व्यवसाय की शुरुआत करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि शुरुआत कितनी छोटी है। असली सवाल यह होना चाहिए कि हम अपने काम को कितनी ईमानदारी, मेहनत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ा सकते हैं। छोटी शुरुआत में बड़ी संभावनाएं छिपी होती हैं, जरूरत है उन्हें पहचानने की, सही योजना बनाने की और लगातार आगे बढ़ते रहने की।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि सफलता हमेशा बड़े साधनों से नहीं बल्कि छोटे कदमों को लगातार आगे बढ़ाने से बनती है। आज की छोटी दुकान कल बड़ी पहचान बन सकती है।
1: बिल्कुल।
0: आज की छोटी सेवा कल बड़ा व्यवसाय बन सकती है। आज की छोटी बचत कल बड़ी पूंजी बन सकती है। और आज का छोटा सा आत्मविश्वास जागृति जी कल बड़ी सफलता की वजह बन सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए अपने काम को छोटा समझ कर कभी अपने सपनों को छोटा न करें। शुरुआत चाहे छोटी हो लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। मेहनत सच्ची हो, व्यवहार ईमानदार हो और सीखने की इच्छा बनी रहे तो रास्ते धीरे धीरे खुल जाते हैं।
1: बिल्कुल। तो बस अंत में यही कहना चाहेंगे कि छोटा व्यवसाय केवल कमाई की शुरुआत नहीं, ये आत्मविश्वास की शुरुआत है। और जब आत्मविश्वास मेहनत का हाथ थाम लेता है तो छोटी शुरुआत भी बड़ी मंजिल तक पहुंच सकती है।
0: बिल्कुल।
1: इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। समय उजला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो चूनू हवाद। सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपनी साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है।
0: जी हाँ,
1: लेकिन अक्सर हम उसे समझने में देर कर देते हैं। आज का विषय है शरीर की भाषा और स्वास्थ्य को लेकर।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, हम सभी बोलकर अपनी बात कहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा शरीर भी बिना शब्दों के हमसे लगातार बातें करता है। कभी सिर दर्द, कभी थकान, कभी भूख कम लगना, कभी नींद न आना, कभी बार बार प्यास लगना, कभी चक्कर आना, तो कभी शरीर में दर्द, ये सब शरीर के संदेश हैं। अगर हम इन संदेशों को समय रहते समझ लें तो कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मनीषा, लोग अपने काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि शरीर के छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए श्रोता साथियों, शरीर पहले धीरे से चेतावनी देता है और अगर तब भी ध्यान न दिया जाए तो बीमारी के रूप में हमें रुकने पर मजबूर कर देता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय से तो रूबरू कराई चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं शरीर की भाषा और स्वास्थ्य को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि मनुष्य केवल शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त नहीं करता, बल्कि उसका शरीर भी श्रोता साथियों लगातार कुछ न कुछ कहता रहता है। हमारे चेहरे के भाव, आंखों की गतिविधियां, बैठने और खड़े होने का तरीका, हाथ पैर की गतिविधियां, चलने की गति, आवाज का उतार चढ़ाव और शरीर की मुद्रा, श्रोता साथियों ये सभी हमारी भावनाओं, मन की स्थिति और कई बार हमारे स्वास्थ्य के बारे में हमें संकेत देते हैं। इसी को सामान्य रूप से हम शरीर की भाषा कहते हैं साथियों।
1: जी हाँ।
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि हम जब भी किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो केवल उसके शब्द ही नहीं सुनते, बल्कि उसके चेहरे और हाव भाव को भी देखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: यदि कोई व्यक्ति मुस्कुराकर बात करता है श्रोताओं, तो हमें उसमें आत्मविश्वास और प्रसन्नता का अनुभव होता है। इसके विपरीत यदि श्रोता साथियों कोई व्यक्ति लगातार उदास दिखाई देता है, तो उसकी आंखों में थकान, शरीर झुका हुआ और वह सामान्य गतिविधियों में रुचि नहीं ले रहा है, तो श्रोता साथियों यह उसके मन या शरीर में चल रही किसी परेशानी का संकेत है।
1: बिल्कुल मनीषा, शरीर की भाषा का मतलब है शरीर द्वारा दिए जाने वाले वे संकेत जिनके माध्यम से वह हमें बताता है कि अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं।
0: जी
1: जैसे कि लगातार थकान महसूस होना, बिना कारण वजन कम या ज्यादा होना, भूख कम लगना, नींद पूरी होने के बाद भी सुस्ती रहना, बार बार सिर दर्द होना, सांस फूलना, शरीर में सूजन आना, त्वचा का रंग बदलना, आंखों का पीला होना, बालों का अधिक झड़ना, नाखूनों का कमजोर होना, ये सभी संकेत बताते हैं कि शरीर को हमारी मदद की जरूरत है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, कई लोग सोचते हैं कि मेहनत की वजह से थकान होना सामान्य है, लेकिन यदि बिना ज्यादा काम किए भी लगातार कमजोरी महसूस हो रही है, तो ये शरीर में खून की कमी, पोषण की कमी, थायराइड, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए केवल आराम करने से काम नहीं चलेगा, कारण जानना भी जरूरी है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर बात करें शरीर और मन के संबंध की, तो साथियों हम देखते हैं कि हमारा शरीर और मन अलग अलग नहीं है। मानसिक स्थिति का प्रभाव शरीर पर और शारीरिक स्थिति का प्रभाव मन पर पड़ता है। जब हम तनाव में होते हैं श्रोताओं, तो हमारे शरीर में कई बदलाव हो सकते हैं। दिल की धड़कन तेज हो सकती है, सांस लेने का तरीका बदल सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है और व्यक्ति को बेचैनी महसूस हो सकती है।
1: जी जी।
0: साथ ही श्रोता साथियों, इस तरह पर्याप्त नींद न मिलने से व्यक्ति की आंखों में थकान, चेहरे पर सुस्ती और शरीर की गतिविधियां हैं अंजलि जी, उनमें भी कमी दिखाई देती है।
1: जी हाँ।
0: लंबे समय तक चिंता या तनाव में रहने से श्रोता साथियों व्यक्ति का व्यवहार है वो बदल जाता है।
1: बिल्कुल मनीषा, कई लोग सोचते हैं कि मेहनत की वजह से थकान होना सामान्य है, लेकिन यदि बिना ज्यादा काम किए भी लगातार कमजोरी महसूस हो रही है, तो ये शरीर में खून की कमी, पोषण की कमी, थायराइड, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है।
0: जी हाँ।
1: इसलिए श्रोता साथियों, केवल आराम करने से काम नहीं चलेगा, कारण जानना भी जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जब शरीर स्वस्थ होता है तब भूख भी सही लगती है।
0: जी हाँ।
1: और भोजन भी आसानी से पचता है। अगर लगातार भूख कम लगे, खाना खाने के बाद भारीपन रहे, गैस या कब्ज बनी रहे, बार बार पेट दर्द हो, तो इससे सामान्य बात समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और समय पर खाना शरीर को स्वस्थ रखता है।
0: बिल्कुल।
1: नींद केवल श्रोता साथियों आराम नहीं, बल्कि शरीर की मरम्मत का समय होता है। अगर देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत हो, तनाव ज्यादा हो या नींद पूरी न हो, तो शरीर धीरे धीरे कई समस्याओं की ओर बढ़ने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: नींद की कमी से याददाश्त कमजोर होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है, हृदय रोग का खतरा भी बढ़ सकता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं। तो ये बातें कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों से ऐसे ही जारी रखेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बहुत अच्छे विषय पर बात कर रहे हैं, हम जान रहे हैं शरीर की भाषा और उसका स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर। श्रोता साथियों, शरीर का कोई भी लगातार रहने वाला दर्द सामान्य नहीं होता है।
1: जी हाँ।
0: यदि कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सीने में दर्द, सिर दर्द लंबे समय तक बना रहे तो केवल दर्द की दवा लेने के बजाय डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ त्वचा और आंखें जो होती हैं वो भी बोलती हैं। त्वचा हमारे स्वास्थ्य का आईना है। यदि त्वचा बहुत रूखी हो, बार बार खुजली हो, पीलेपन की समस्या हो, आंखें पीली दिखे तो ये शरीर के अंदर किसी समस्या का संकेत हो सकता है। कई बार मनीषा शरीर नहीं बल्कि मन पहले संकेत देता है।
1: जी हाँ।
0: यदि किसी काम में मन न लगे, हमेशा उदासी रहे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आए, घबराहट बनी रहे, किसी से मिलने का मन न करे तो यह मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय होता है।
1: बिल्कुल।
0: मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि श्रोता साथियों, हम जो भोजन करते हैं उसका सीधा संबंध है वो हमारे स्वास्थ्य से है। शरीर को ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल।
1: यदि भोजन श्रोता साथियों संतुलित न हो तो कमजोरी, थकान या अन्य परेशानियां है वो हमें महसूस हो सकती हैं। इसलिए श्रोता साथियों, भोजन में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दालें, अनाज, दूध या उनके उचित विकल्प हैं श्रोता साथियों, जैसे कि मेवे और पर्याप्त पानी हम शामिल कर सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: बहुत अधिक तला भुना, अत्यधिक मीठा या अत्यधिक नमकीन वाला श्रोता साथियों भोजन ही उसका हमें नियमित सेवन नहीं करना है। आप चाहे तो श्रोता साथियों उसका कभी कभी सेवन कर सकते हैं, लेकिन लगातार उसके सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।
0: बिल्कुल मनीषा, गांव में लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कई बार नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं कराते। छोटी सी परेशानी को भी अपने आप ठीक हो जाएगी ऐसा सोचकर टाल देते हैं और यही लापरवाही बाद में बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। गाँव के स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य शिविरों का लाभ जरूर हमें उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, हमारा शरीर एक अनमोल साथी है। यह दिन रात बिना रुके हमारे लिए काम करता है और जब भी किसी समस्या का आभास होता है तो छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से हमें सावधान करता है। समझदारी इसी में ही है कि हम इन संकेतों को अनदेखा करने के बजाय उन्हें समझे और समय पर सही कदम उठाए।
1: बिल्कुल।
0: स्वस्थ जीवन केवल दवाइयों से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम, सकारात्मक सोच और समय पर स्वास्थ्य जांच से बनता है।
1: जी हाँ।
0: आज हम एक संकल्प लें कि हम अपने शरीर की हर छोटी बड़ी बात को महत्व देंगे, अपने परिवार के सदस्यों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे और जरूरत पड़ने पर बिना झिझक स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सा से सलाह लेंगे। क्योंकि
1: जी
0: जब
1: हाँ।
0: हम अपने शरीर की भाषा को समझना सीख जाते हैं तब हम केवल बीमारी से नहीं बचते बल्कि एक ऊर्जावान, खुशहाल और सम्मानपूर्ण जीवन की ओर भी कदम बढ़ाते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि हमारा शरीर है वो हर समय हमसे संवाद करता रहता है।
0: बिल्कुल।
1: कभी चेहरे के भावों के माध्यम से श्रोता साथियों, कभी थकान के रूप में तो कभी नींद में बदलाव के रूप में, और कभी श्रोता साथियों हम देखते हैं कि सर दर्द या कमजोरी के रूप में। जरूरत केवल श्रोता साथियों इतनी सी है कि हम उन संकेतों को समझे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आदत विकसित करें।
0: जी।
1: शरीर की भाषा को समझना किसी बीमारी का स्वयं निदान करना नहीं है साथियों, बल्कि अपने शरीर के प्रति जागरूक होना है। यदि हम संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, नियमित गतिविधियां, स्वच्छता और मानसिक शांति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे अंजलि जी, और शरीर में होने वाले बदलावों को नजरअंदाज नहीं करेंगे तो श्रोता साथियों हम हमारे स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। याद रखिए साथियों कि हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसकी आवाज को सुनिए, उसके संकेतों को समझिए और स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम हमेशा आगे बढ़ाइए।
0: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें की और अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी हाँ।
0: विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले एक और प्यारे से गीत के साथ में श्रोता साथियों को मनोरंजन करवाना चाहेंगे।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि मनीषा के आज कार्यक्रम में हमारी जो श्रोता साथियों से बातचीत रही है वो उन्हें अवश्य पसंद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमर वावरे अमर हित्ता भाई बुन ने आपनी बुन मनीषा
1: ने आपनी बुन अंजलि नु
0: राम राम होवे भाई बुनो आप सब हमले रिया हो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर हूँ अमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में
1: होवे भाई बुनो लेने हाजिर थे गये हूँ कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक नया विषय ने हाथे

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
1: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

ये गजल मैंने मेरे से बहुत दिनों में इसकी धुन बनी मैं पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खां मोमिन की गजल है जिसका मतलब है रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह।